0: मेरा जन्म हुआ था कलकत्ता शहर में,
1: जी
0: और पढ़ाई वहीं हुआ था, और फिर मैं रिजर्व बैंक में नौकरी ले लिया और सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में सेटल हो गया। और मुझे 30 साल की उम्र से महात्मा इनोके इनके साथ सत्संग का मुझे सौभाग्य मिला, और उनसे मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ। और समझिए 18 अध्याय भगवत गीता का मैंने एक बहुत ही संत के उनके चरण में बैठ के मैं इसकी अध्ययन किया था, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं सेवानिवृत्ति निवृत्ति लिया हूँ, और लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो सेवा हो सके वो करता हूँ।
1: बहुत सुंदर मोहन जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन साहब। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रोग्राम हमें हमको समझने के लिए है, और आप से हमें उस सहायता की अपेक्षा है जिससे हम अपने आप को, हमारे सुनने वाले अपने आप को पहचान सकें। तो एक शब्द है, एक विधा है, एक धारा है जिसको आध्यात्म कहते हैं। तो एक साधारण मनुष्य को समझने के लिए मोहन जी हमें बताएं, आध्यात्म क्या समझे हम, अध्यात्म का क्या मतलब हम माने?
0: अध्यात्म को समझ के लिए जरा बारीकी की सोच की जरूरत है। इस संसार में दो ही चीज है, एक है अहम मैं, और दूसरा है इदम ये सब।
1: जी
0: इदम जो ये सब है उसे अनात्मा कहते हैं,
1: वाह
0: और अहम जो मैं हूं उसको कहते हैं आत्मा, और ये आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं, उसके साथ जो संबंध बनाए रखना है उसे अध्यात्म कहते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब सीधे सीधे सी तौर पे मोहन साहब, क्या मैं ये समझूं कि आत्मा के अध्ययन को आध्यात्म कहते हैं?
0: हाँ, आत्मा की अध्ययन आत्म विचार को अध्यात्म कहते हैं।
1: वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत। यहां पर दोस्तों आपने गौर किया हो, मोहन सर ने दो चीजें बताई, एक तो अपना अध्ययन आध्यात्म, और नहीं अहम एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और दूसरा था इदम।
0: जी
1: मैं ठीक कह रहा हूं ना सर?
0: जी ठीक कह रहे, एकदम।
1: इदम मतलब देखिए, ये शब्द मुझे, सच बोलूं मुझे नहीं पता था, और हमारे सुनने
0: अच्छा,
1: वालों में से कितने लोगों को नहीं पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन
0: हाँ
1: आज मेरी मुझे एक नया शब्द सुनने में आया, उसकी मतलब समझ में आया, इदम। वाह क्या बात है, तो बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए मोहन सर, यहीं पे मेरे दिमाग में जो विचार आ रहा है वो ये कि आध्यात्म की अगर हम बात करें तो एक और शब्द है धर्म, वो पीछे नहीं रहता। तो अब धर्म का मतलब भी बताइए, और मुझे ये समझाइए कि क्या धर्म और आध्यात्म में फर्क है? नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या है, मतलब इन दोनों के बीच क्या तालमेल है?
0: अच्छा, धर्म है आचरण, अध्यात्म है ज्ञान।
1: जी
0: अभी ये कि मनुष्य में एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी है ज्ञाता, जो जानते हैं, और हमारी आचरण हमारे ज्ञान के अलाइनमेंट में रहे उसको धर्म कहते हैं। अभी अध्यात्म कहता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो अगर आचरण भी सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप के तालमेल में रहे तो मैं चिंतन क्रिया और बोली एक लाइन में रहे, जे क्रिया और बोली के जो एक लाइन में रहना आचरण को धर्म कहते हैं। उसका गलत ट्रांसलेशन हो गया, मत के बराबर हो गया, लेकिन उसका धर्म का मतलब है आचरण, अपना कर्म, अपना स्वधर्म करना, उसी को धर्म कहते हैं।
1: जी, जितना मुझे समझ में आया मोहन साहब, जिस भी तरीके से हम अपनी जीवन शैली चलाते हैं,
0: जी
1: उचित आचरण करते हुए,
0: हाँ,
1: बस उसी को धर्म कहते हैं।
0: उसी को धर्म कहते
1: क्या
0: हैं।
1: बात, बहुत खूब। दोस्तों मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को सुनकर कि धर्म क्या है और आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत सुंदर। तो बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।

पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए। सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन,

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग।
0: वाओ,
1: हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी
1: मैं किस लिए। वो कहते हैं भज गोविंदम, एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही
1: है। उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं न किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अर्थ है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाए। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले ले और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक

0: का मतलब आनंद में देख रहा हूं।
1: जी
0: तो ये जो है याचना, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
1: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए करते रहिए, छोड़िएगा नहीं वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आता है आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
0: अच्छा अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर तो ये उस जो जो स्वयं प्रकाश नहीं है जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं उसे अनात्मा कहते हैं।
1: ओके
0: जो स्वयं प्रकाश है स्वत सिद्ध है उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए रात को मैंने फोन किया आपको
1: जी
0: और मैं बोल रहा हूँ समीर जी आप हैं
1: जी जी जी
0: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूँ बीवी से पूछ के बताता हूँ?
1: जी जी मैं तो कहूंगा मैं हूँ।
0: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ
1: बोल रहा हूँ,
0: इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
1: क्या बात है जी।
0: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या तो आप बोलेंगे नहीं एक मिनट मैं मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा
1: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा
0: उंगली डाल के देखना पड़ेगा जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुर आदि जो हमारे पास जो करण है उपकरण है इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूं वो अनात्मा है।
1: ओके जी।
0: और ये सब के पीछे जो शक्ति है जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है उसको आत्मा कहते हैं।
1: जी जी जी
0: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
1: हाँ,
0: ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है, कोई से भी पूछे आप हैं क्या वो कहेगा हाँ मैं
1: हूँ। करेक्ट ब्यूटीफुल।
0: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
1: जी,
0: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
1: बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
0: अच्छा यहाँ दो चीज है, एक तो है विश्वास
1: जी।
0: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
1: वाओ ओके।
0: अच्छा ये जो धर्म का है हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था ऐसे मैं तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
1: जी जी।
0: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था तो आप कहेंगे मैं माँ के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
1: करेक्ट।
0: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
1: जी।
0: एप्पल एप्पल जो है जो सेब जो है कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था वो वक्त आने पर। वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल।

0: होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीच से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया
1: सुंदर।
0: और कुछ दिनों के बाद ये जो है जो प्रकट हुआ वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट, इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
1: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों, कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी 90.4।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा। लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरे जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चलता हूँ
0: जी,
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूं तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी।
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट? मैं IAS बनना चाहता था, वो कहते नहीं IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजिशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल की उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने मैसेज जी मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता ना ईश्वर अनुग्रह है मुझे गुरु मिले, और गुरु ने मेरी सोच मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते हैं आयो पावम, बेचारा
0: बेचारा। ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह, मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई, रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से जो शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट। और माय एक्सपेक्टेशन इज, मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीज है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑल राइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी,
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है। क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है हमारी गैलेक्सी, या इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोक क्या है, वो उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है। अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है, इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।
0: तो यार, जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है, उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: तो जाहिर सी बात है, इन सारी बातों को सुनकर समझकर मैं तो विश्वास से सारे मित्रों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1 2 3 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं।
0: जी
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बोलिए ना, अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+b होल स्क्वायर सीखना चाहिए। तो
0: सही
1: आप
0: बात है।
1: ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा।
0: जी।
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही। उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप वन कर्म योग, स्टेप टू उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स एब्सोल्युटली जरूरत है। कर्मयोग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन।
0: जी
1: इसमें सब कुछ आ जाते हैं।
0: जी श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
1: निध्यासन,
0: नित्यासन।
1: निधि निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या,
0: अच्छा
1: निधि ध्यासन।
0: निधि ध्यासन।
1: निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्म विचार के ऊपर धी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
0: ओके ओके ऑलराइट। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने 3 स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे, मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एलजेब्रा को समझने के लिए पहले आप a+b होल स्क्वायर तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एलजेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
1: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ,
0: जी
1: बाकी सब ईश्वर कृपा है।
0: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा। ईश्वर कृपा गुरु है, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे 2 शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: थैंक यू
1: ये जरा टेक्निकल है, जरा
0: जी,
1: समझने दें।
0: ऑफ कोर्स।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे प्यार, पॉलिटिक्स या वैलेंटाइन्स की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी एक फॉन्ट की। जी हाँ, एक फॉन्ट जो हम सभी यूज करते हैं, और बिलीव कीजिए, ये कहानी आपको किसी थ्रिलर से कम नहीं लगने वाली। लेट 1920s का लंदन इमेजिन कीजिए। सुबह होती थी, चाय के साथ एक चीज पर भरोसा सब करते थे, द टाइम्स न्यूज़पेपर। अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी से भरा हुआ। अगर टाइम्स ने लिख दिया भाई, तो मतलब सच है। लेकिन एक आदमी था जो रोज पेपर तो पढ़ता था, बट इरिटेट हो जाता था। उसे आर्टिकल से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे हेडलाइन से भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम थी लेटर्स से। हाँ, अक्षरों से। स्टैनले मॉरिसन, वो जर्नलिस्ट नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, आर्टिस्ट भी नहीं था, एटलीस्ट ड्रामेटिक पेंट स्प्लैटर्ड आर्टिस्ट टाइप तो नहीं ही था। वो था टाइपोग्राफिक थिंकर, ऐसा आदमी जो ए को देखकर उसका वेट मेजर कर लेता था, ई को देखकर उसकी स्पेसिंग जज कर लेता था, और कॉमा को देखकर उसकी डिग्निटी पर डिस्कस कर सकता था। जब मॉरिसन ने द टाइम्स को देखा, उसे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। पेपर मॉडर्न था, फास्ट प्रिंटिंग प्रेसेस पर छपता था, चीप न्यूज प्रिंट पर छपता था, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी होता था, लेकिन लेटर्स पुराने जमाने के, लाइंस क्लॉग थी, इंक स्प्रेड हो जाती थी, कॉलम स्पेस वेस्ट हो रहा था। आप सोचिए, 1920s में कोई आदमी न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करे, वो भी पब्लिकली, और फिर क्या हुआ? आज के जमाने में होता तो शायद ट्विटर वॉर बन जाता, लेकिन उस दौर में क्लास थी। द टाइम्स ने कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम है, तो आइए सोल्यूशन दीजिए। इमेजिन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। मॉरिसन को इनवाइट किया गया, एक नया टाइप फेस डिजाइन करो, ऐसा जो स्मॉल साइज में भी क्लियर हो, चीप पेपर पर भी एलिगेंट लगे, फास्ट प्रिंटिंग सरवाइव कर सके और डिग्निटी भी न खोए। अब ये सिर्फ डिजाइन का काम तो नहीं था, ये इंजीनियरिंग भी था, साइकोलॉजी भी था, फिलॉसफी भी था। मॉरिसन रेनेसों एरा के लेटर फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, उनका बैलेंस, उनकी रीडेबिलिटी, उनकी सिमेट्री, लेकिन वो उन्हें कॉपी नहीं करते, वो उन्हें रिफाइन करते हैं, लेटर्स को थोड़ा नैरो करते हैं ताकि कॉलम में ज्यादा वर्ड्स आ सके, सेरिफ्स को शार्पन करते हैं ताकि इंक स्प्रेड होने पर भी क्लैरिटी बनी रहे, स्पेसिंग टाइटन करते हैं ताकि पेज क्लीन लगे। वो सिर्फ रिफाइन करते हैं और करते जाते हैं, हर स्ट्रोक कैलकुलेटेड, हर कर्व जस्टिफाइड। फिर आते हैं विक्टर लार्डेंट, टाइम्स के ड्राफ्ट्समैन। डिजाइन पेपर पर मेटल से आता है, लेटर्स को मेटल में कट किया जाता है, कास्ट किया जाता है, प्रेस पर टेस्ट किया जाता है, और फिर रिजेक्ट, फिर से ड्राइंग बोर्ड, फिर कास्ट, फिर प्रिंट, फिर रिजेक्ट, ओवर एंड ओवर एंड ओवर ओवर अगेन। क्यों? क्योंकि मेटल में जो सुंदर लगता था, प्रिंट में वो मेसी हो जाता था। ये वही स्टेज है जहां पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन मॉरिसन
मॉरिसन परफेक्शनिस्ट था। और फिर आई अक्टूबर 1932 की एक सुबह, द टाइम्स का एक नया इशू निकला, सेम पेपर, सेम हेडलाइंस, सेम जर्नलिस्ट्स, लेकिन लेटर्स एकदम नए। पेज क्लीनर था, वर्ड्स क्लियरर थे, कॉलम्स शार्पर थे, और रीडर्स, उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और दोस्तों, वही सबसे बड़ा ट्रायम्फ था। बेस्ट डिजाइन वो होता है जो चिल्ला चिल्लाकर अटेंशन नहीं सीख करे, वो क्वाइटली काम करता है। सालों बाद दुनिया को पता चला हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल टाइपफेस क्वाइटली लॉन्च हो चुका था। उसका नाम टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, वही फॉन्ट जिसमें हम सब ने स्कूल प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, वही फॉन्ट जिसमें रिज्यूम्स बनाए जाते हैं, वही जिसमें लव लेटर्स टाइप हुए हैं, और वही जिसमें रेजिग्नेशन लेटर्स भी टाइप किए गए हैं। और शायद इस वक्त मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो सभी उसी फॉन्ट में है। कभी सोचा है, एक फॉन्ट ने दुनिया का टोन डिफाइन किया, अथॉरिटी का लुक डिसाइड किया, सीरियसनेस को शेप किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पर्सनालिटी दी, और लोगों को पता भी नहीं चला। इस कहानी का मॉरल, कभी कभी सबसे पावरफुल चीजें वो होती हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होती, जो क्वाइटली काम करती हैं, जो क्लैरिटी देती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करें या उसे ओपन करें और डिफॉल्ट फॉन्ट दिखे, तो जरा रिस्पेक्ट से देखिए। हो सकता है वो सिर्फ लेटर्स ना हो सकता है वो डिजाइन की दुनिया का एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो। सोच के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि कभी कभी लगता है घर का दरवाजा खोलने से पहले ही राइडर बाहर खड़ा होगा। सर, आपने सोचा भी था ऑर्डर करने का? हम निकल पड़े। इंट्यूशन लेवल माँ से भी तेज।

दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं जापान की कंट्री साइड। विंडोज के बाहर ग्रीनरी ब्लर हो रही है, सिस्टम परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट, सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। फिर अचानक ट्रेन रुकती है, डोर्स खुलते हैं, आप उतरते हैं और सामने ना कोई शहर, ना कोई मार्केट, ना कोई रोड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक नदी, एक जंगल और ऊपर खुला आसमान। ये है जापान की सिरोमुराशी स्टेशन की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कहीं नहीं लेके जाता और जहां आप पैदल पहुंच भी नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रेन से ही आ सकते हैं और ट्रेन से ही वापस जा सकते हैं। क्यों बनाया गया होगा ऐसा स्टेशन? प्रॉफिट के लिए? नहीं। टूरिज्म के लिए? नहीं। एडवर्टाइजमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। ये स्टेशन बना सिर्फ एक वजह से, ताकि लोग रुक सकें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर एक चीज मेजर होती है। कितना प्रोडक्टिव हो, कितना कमा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो जीवन में। लाइफ एक डैशबोर्ड बन चुकी है, मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। और उस दौर में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्वाइटली खड़ा है, जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। सोचिए, ट्रेन आती है, आप उतरते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड फ्लैश नहीं कर रहा, कोई एड नहीं कह रहा कि ये खरीदो वो खरीदो, और कोई नोटिफिकेशन नहीं कह रहा रिप्लाई करो भाई रिप्लाई करो। बस हवा है, पानी की हल्की सी आवाज है, पेड़ों का सांस लेना है, और आप, बस आप। ये स्टेशन ये याद दिलाता है कि कभी कभी एग्जिस्टेंस खुद ही इनफ होता है। जापान को हम एफिशिएंसी के लिए जानते हैं। बुलेट ट्रेन्स सेकंड्स की एक्यूरेसी से चलती हैं। सिस्टम्स हैं फ्लॉलेस और डिसिप्लिन है अनमैच्ड। लेकिन उसी प्रिसिशन के नीचे एक सॉफ्टनेस भी है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, मोनो नो अवेयर। इसका मतलब है चीजों के बीत जाने के बाद जो हल्की सी उदासी रह जाती है उसका एहसास। ये समझना कि ब्यूटी परमानेंट होती है और शायद इसीलिए प्रेशियस होती है, यही इसका सार है। जैसे चेरी ब्लॉसम जब पेड़ से गिरता है तो वो गिरना उसकी खूबसूरती है। सिरोमुराशी स्टेशन भी वैसा ही है। आप वहां हमेशा नहीं रह सकते। ट्रेन वापस आएगी, डोर्स बंद हो जाएंगे, लाइफ फिर से चल पड़ेगी। लेकिन उन कुछ मिनटों के लिए आप बेंच पर बैठकर बस देख सकते हैं नदी का फ्लो, हवा का मूवमेंट, आसमान का वो नीला रंग, और शायद अपने अंदर की नॉइस भी धीरे धीरे कम होती हुई महसूस होती है। सोचिए, एक रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ऐसा स्टेशन बनाएंगे जो उन्हें रिच नहीं बनाएगा, जो उन्हें आमदनी नहीं देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये डिसीजन रहा कि ब्यूटी मैटर करती है, रुकना मैटर करता है, और साइलेंस, शांति सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज के दौर में जब हर जगह हसल कल्चर का प्रेशर है, जल्दी चलो, ज्यादा कमाओ, थोड़ा सो, उस सभी के बीच में ये स्टेशन एक साइलेंट रिबेलियन है। ये कह रहा है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, कभी कभी प्लेटफॉर्म भी होती है। हम सब अपनी अपनी ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं, करियर की ट्रेन, रिलेशनशिप की ट्रेन, सोशल एक्सपेक्टेशंस की ट्रेन। कभी सोचा है आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी रीजन के पॉज लिया था? कब बिना फोटो क्लिक किए सनसेट देखा था? कब बिना स्टोरी अपलोड किए कॉफी पी थी? सिरोमुराशी स्टेशन कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, वो एक फिलॉसफी है। वो याद दिलाता है कि हम सिर्फ मशीन्स नहीं हैं,
हम सब प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान को कभी कभी बस रहना होता है, बस होना होता है। शायद हमें जापान जाने की जरूरत नहीं, शायद हमें अपनी ही लाइफ में छोटे छोटे नो डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है। 5 मिनट बिना फोन के, 10 मिनट बिना गोल के, थोड़ा वक्त बिना आउटकम के, क्योंकि आखिर में ब्यूटी का पर्पस सिर्फ देखा जाना होता है और एग्जिस्टेंस का सेलिब्रेशन सिर्फ महसूस किया जाना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ की ट्रेन भाग रही हो, कभी कभी एक ऐसा स्टेशन ढूंढ लीजिए जो कहीं नहीं जाता, हो सकता है वही आपको वापस खुद तक ले आए। जरा रुक के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पुराने बाजार में दुकानदार कहता था, अरे आज थके हुए लग रहे हैं, चाय पिला देता हूँ, पियेंगे? आज ऐप बोलता है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बिहेवियर यू मे ऑल्सो लाइक एंग्जाइटी।

वो सिर्फ कस्टमर को नहीं देखता, वो दूसरी दुकानें भी देखता है। कौन सी कुर्सी अब तक बाहर है? अगर उसे दिखता है कि किसी और दुकान के बाहर कुर्सी अभी भी बाहर ही वेट कर रही है, तो हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, उधर चले जाइए साहब, उनके पास जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। सोचिए, अपना कस्टमर किसी और के पास भेजना, आज के जमाने में तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन वहां सूख में ये बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक कम्युनिटी की बात थी, ये सर्वाइवल का शायद एक शेयर्ड मॉडल था। वहां कंपटीशन का मतलब था साथ साथ जीतना, आउटशाइन करना नहीं, अपलिफ्ट करना। सूख में प्रोस्पेरिटी एक रेस नहीं थी, एक जर्नी थी सभी के साथ। अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। आज हम ऐप खोलते हैं, एक क्लिक, एक ऑर्डर, फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, 30 मिनट्स गारंटी, बेस्ट प्राइस गारंटी। कन्वीनियंस के नाम पर हम सभी ने स्पीड को वर्शिप करना एकदम शुरू कर दिया है, लेकिन इस स्पीड के पीछे क्या है? डिलीवरी राइडर जो ट्रैफिक में जान रिस्क पर डालता है, वो वर्कर जो मिनिमम वेज पर लॉन्ग शिफ्ट करता है, छोटी दुकान जो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि कौन दिखेगा कौन नहीं। वेंचर कैपिटल डिसाइड करता है कि किसकी ग्रोथ होगी, किसकी दुकान बंद होगी। और धीरे धीरे वो कुर्सियां गायब हो गई, वो हल्की सी मुस्कान, वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, वो बिलोंगिंग का एहसास, वो बातचीत का मजा। कॉमर्स का ह्यूमन फैब्रिक धीरे धीरे पतला हो गया। आज हम सक्सेस को मेजर करते हैं स्केल से, स्पीड से, फंडिंग राउंड से, लेकिन पुराने जमाने के बाजार में सक्सेस मेजर होती थी रिश्तों से। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप लोकल दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपका नाम जानता है, आपके घर का एरिया जानता है, कभी कभी आपके बच्चों के एग्जाम्स भी याद रखता है। ऑनलाइन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आते हैं, वो सिर्फ एक ऐप है और वो सिर्फ डेटा दिखाती है। सूख की कुर्सी एक सिंबल थी कि आज मेरी बारी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आएगी, पर मेरे पड़ोसी की आज आ जाए, ये भी एक खुशी की बात ही है मेरे लिए। क्या हमने वो सोच खो दी है? ये कहानी सिर्फ बाजार की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। हम सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह, करियर की, रिलेशनशिप की, एम्बिशंस की। कभी कभी हमारी कुर्सी बाहर रह जाती है, दिन शुरू ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, और तब घर का कोई पड़ोसी हल्की सी मुस्कान से अगर ये कह दे कि साथ हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या बात होगी? कभी सोचा है, शायद दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए। शायद असली वेल्थ कभी गुड्स में थी ही नहीं, वो हाथों में थी जो उन्हें बेचते थे, वो दिलों में थी जो कस्टमर को गाइड करते थे, वो इनविजिबल टाइज में थी जो एक कम्युनिटी को बांध कर रखती थी। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी छोटी दुकान के पास से गुजरे या किसी लोकल वेंडर से खरीदारी करें, एक पल के लिए कुर्सी को याद कीजिए, वो कुर्सी जो कह रही थी हम साथ जीतते हैं। और शायद हम सबको अपनी जिंदगी के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार सिर्फ सामान से नहीं, इंसान से बनता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: आजकल तो ऐप इतनी स्मार्ट हो गई है कि कल मैंने बस अपना फोन उठाया ही था कि ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, मैम आप उदास लग रही हैं, आइसक्रीम भेज दें। और नीचे छोटा सा लिखा था, डिलीवरी पार्टनर ऑलरेडी इमोशनल सपोर्ट के साथ निकल चुका है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की दुबली पतली मृदुभाषी नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942। बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई। वहां
वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक इन माई हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थी कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत यह भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन है, उद्यमी है, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए। परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया, मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता, ये किसी काम का नहीं है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा, ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा। हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे, तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते
तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने दो तीन दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। YouTube पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे। उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।
2: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद

प्रतिशत से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था, कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले, मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हंसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे, जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता, पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन 1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं।
वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग, इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। यूं देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और किताबों के पठन पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आसपास और पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से हमें कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो उन गुणों के लिए आकर्षित हो, प्रभावित हो, उसे पता चले कि ऐसा होता क्यों है। इस अवधि में बाकी सारी पढ़ाइयां, शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र की पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कोयले की कहानी।
2: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए, ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा, कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना?
1: है काका, आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन, तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका, मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना, तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका।

0: आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
1: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था, तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
2: अरे ओ शंभू, ओ शंभू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चलो चलो चलो, हे हा।
3: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
4: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
5: सोने भी नहीं देता।
3: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
4: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
3: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
4: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
3: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना, किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
4: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
3: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
4: ओफो,
3: तब तेरी समझ में आएगा।
4: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
3: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
1: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा, मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
2: चलो चलो चलो,
6: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
3: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
6: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं, किसने किया ये सब?
3: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
6: और शंभू कहाँ था?
3: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
6: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
3: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
6: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
3: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
6: इन्हें

0: अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
1: मेरे पास लाठी है ना,
0: हाँ,
1: इसी से। और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
0: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूँ। चलो।
1: चलिए काका, चल शेरू आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
0: शंभू! अरे ओ शंभू!
1: अरे ओ शंभू!
3: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता।
1: क्या है?
0: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूँ। और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
3: आप मुखिया साहब, आप आपके खेत किसने उजाड़े?
0: मुझसे पूछ रहा है। तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
3: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
1: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
3: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
0: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
3: लेकिन मेरे पशु कहाँ हैं?
0: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
3: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
0: अच्छा चल जा और देख।
3: हाँ।
0: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
3: जी।
0: किसी और के खेत में ना घुसे।
3: जी।
0: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ।
3: जी।
0: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
3: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
0: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
1: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
0: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
1: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू आ। इधर
2: इधर। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
4: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
3: काका।
4: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
1: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: संबंध CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में

कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी।

उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे 4 गुना लंबा चौड़ा।
सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रातः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल।

क्रिया से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव, जहाँ।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार हाजिर होती हूं आप सभी के बीच में लेकर एक नई जानकारी। और ठीक ऐसे ही एक नए जानकारी के साथ में मैं आज भी हाजिर हूं आप सभी के बीच में लेकर कार्यक्रम समुदाय के चर्चे। आज समुदाय के चर्चे में हमारे चर्चा का विषय है मातृ वंदना योजना, जिसके लिए हमारे साथ हमारे रेडियो स्टेशन पर मौजूद हैं वर्षा चौहान मैम, जो कि महिला बाल विकास की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिला झाबुआ मध्य प्रदेश की। आज हम करेंगे इनके साथ चर्चा और जानेंगे कि आखिर मातृ वंदना योजना में क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे देश की महिलाओं को। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसमें पात्रताएं क्या क्या हो सकती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे दस्तावेजों के बारे में, किस तरह से हम इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके बारे में बहुत सी अहम जानकारियाँ। मैम, स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाविल 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
1: नमस्ते
0: जी। मैम, हम आज जिस चर्चा पे बात करने वाले हैं वो है मातृ वंदना योजना। आखिर क्या है यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसे क्यों लागू किया गया, तो इसके बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है। जैसा कि हेल्थ सर्वे में बताया जाता है कि 3 में से 1 भारतीय महिला कुपोषण से पीड़ित है, 2 में से 1 भारतीय महिला में खून की कमी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुपोषित अगर महिला होगी तो वो कम वजन के शिशु को जन्म देगी, जिसका परिणाम मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में बढ़ोतरी है, जिसे दूर करने के उद्देश्य से इस योजना को 1 जनवरी 2017 में लागू किया गया है।
0: जी मैम, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। मैम, अभी आपने बताया उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के, कृपया इसे बताइए।
1: गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना, गर्भवती महिला को प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके ये सुनिश्चित करना, द्वितीय प्रसव में बालिका जन्म को प्रोत्साहन करना, नगद प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना, ये इस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया।
0: जी मैम, बहुत ही अहम जानकारियां आपने बताई। मैम, साथ ही हम जानना चाहेंगे तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 क्या है, कृपया इसे बताएं।
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले जो प्रथम बार गर्भवती महिला होती थी उनको इस योजना से लाभान्वित किया जाता था, लेकिन इसका विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 लागू की गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू है। इसमें बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अगर यदि महिला को दूसरी बार प्रसव होता है, उसमें बालिका का जन्म होता है, तो वो भी इस योजना के में पात्र रहेगी।
0: जी मैम, अब तो हमारा प्रश्न एक ही निकलता है इसमें कि अगर हमारे झाबुआ जिले की महिलाएं या फिर पूरे मध्य प्रदेश या फिर भारत की महिलाएं इसके लिए आवेदन करना चाहें तो पात्रता क्या क्या हो सकती है।
1: इस योजना के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएं वो पात्र रहेगी। इसके अलावा अगर 40% दिव्यांग महिलाएं वो भी पात्र रहेगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला भी इसमें पात्र है। आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितग्राही महिला भी इसमें पात्र रहेगी। ई श्रम कार्डधारी महिला भी इसमें पात्र रहेगी। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित महिला भी इसके हितग्राही रहेगी। मनरेगा जॉब कार्ड धारी महिलाएं भी इसमें पात्र रहेगी। 8 लाख प्रतिवर्ष से कम पारिवारिक आय वाली महिला भी इसमें पात्र रहेगी। इसके अलावा गर्भवती और धात्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी इसमें पात्र रहेगी। इसके अलावा आशा जो स्वास्थ्य विभाग की रहती है वह भी इसमें पात्र रहेगी।
0: इसमें पात्रता का तो आपने बताया आवेदन किस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कोई प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, क्या कोई सहायता राशि है जिसे हमारे सरकार द्वारा महिलाओं को दिया जाएगा वो बताइए।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रथम प्रसव पर राशि 5,000 2 किस्त के रूप में मिलेगी, पहली किस्त जो है 3,000 की रहेगी, जिसमें गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन एवं कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने पे महिला को 3,000 की राशि प्राप्त होगी। और यदि बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में उनका जो टीकाकरण का चक्र रहता है वो पूर्ण हो जाता है तब 2,000 की राशि तब प्राप्त होगी, है ना। इसके अलावा अगर दूसरी बार महिला गर्भवती हुई है, उनका प्रसव हुआ है और एक बालिका को अगर उन्होंने जन्म दिया है तो एक किस्त में उनको 6,000 की राशि प्राप्त होगी। इस तरह प्रथम डिलीवरी पर महिला को 5,000 की राशि प्राप्त होगी योजना अंतर्गत, और दूसरी डिलीवरी पर अगर बालिका का जन्म हुआ है तो एक मुश्त 6,000 की राशि प्राप्त होगी। इस तरह वो 11,000 की राशि का लाभ ले सकती है।
2: जी मैम, इसमें हमारे एक छोटा सा प्रश्न रहेगा मैम, जैसे अगर किसी को लड़की जन्म होती है तो लड़की के जन्म के शुभ अवसर पर 6,000 की राशि प्राप्त होगी, तो क्या लड़के के जन्म पर कोई राशि है?
1: सेकंड प्रसव पर नहीं है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: जी मैम, अब हम अपने झाबुआ जिले की महिलाओं की बात करें तो वो कितने प्रतिशत अभी लाभान्वित हो चुकी हैं और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो लाभान्वित होना बाकी है या फिर वो होना चाह रही हैं, कृपया उसके बारे में बताएं।
1: जिले में जब से योजना प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2017 से, तब से लेकर 64,504 गर्भवती महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है और निरंतर ये योजना जन जन तक जारी है और महिलाएं लाभ ले रही है इसका।
2: जी मैम, ये जो 2.0 शुरुआत हुई है इसके बारे में अभी हमारे झाबुआ जिले की बहुत सी महिलाएं नहीं जान रही होंगी, या कुछ जान रही भी होंगी भी तो वो पूरी जानकारी उनको मालूम नहीं होगी, तो उनको पूरी जानकारी के लिए वो क्या कर सकती है, कहाँ जाकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जो भी ग्राम में संचालित हो रहे हैं वहाँ पर महिला जा सकती है। महिला स्वयं भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना का सिटीजन पोर्टल है वहाँ से आवेदन कर सकती है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी वो अपने दस्तावेज देकर योजना का लाभ ले सकती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2.0 जो 1 अप्रैल 2022 के बाद जिनका प्रसव हुआ है और महिला ने बालिका को जन्म दिया है वो अभी अप्लाई कर सकती है।
2: जी मैम, बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हमारे झाबुआ जिले की महिलाओं को और श्रोताओं को दी। मैम, ये जानना चाहेंगे कि हमारे झाबुआ जिले की महिलाएं यदि इसका आवेदन करना चाहती हैं तो वो किस प्रकार कर सकती हैं और आवेदन में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वो भी कृपया बताएं।
1: जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ लेना है वो अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे जाए, वहाँ पर यदि वो ST/SC की महिला है तो उनको जाति प्रमाण पत्र, आधार और बैंक की डिटेल देनी होगी, और यदि उसके अलावा जो मैंने आपको बताई थी कि पात्रता में क्या क्या शर्तें हैं उसमें से भी कोई भी एक दस्तावेज और आधार और बैंक खाता वो डिटेल दे देंगे

0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका आवेदन ऑनलाइन कर देगी और वो स्वयं भी सिटीजन पोर्टल से अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकती है।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे झाबुआ जिले की महिलाओं को एक प्यारा सा संदेश दें।
0: जैसा कि हम जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हमें पर्याप्त आराम और चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है, तो इस योजना के माध्यम से समय समय पर चिकित्सीय जांच हो जाती है, जो राशि प्राप्त होती है उससे पोषण संबंधित उन सुविधा का लाभ ले सकते हैं, और जो होने वाला बच्चा है वो बच्चे के जन्म के बाद उनका टीकाकरण भी प्रॉपर हो जाता है। तो इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें और अपना और अपने परिवार की नींव मजबूत करें। धन्यवाद।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय निकाला, हमारे रेडियो स्टेशन पर आई और हमारे श्रोताओं को इतनी खास और अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना आज मातृ वंदना योजना के बारे में, किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या लाभ इसके अंतर्गत मिल सकता है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही आप सभी ने जाना इसमें पात्रता क्या क्या होती है। इन सभी जानकारियों को सिर्फ सुनिए और समझिए नहीं, बल्कि इसका लाभ लीजिए और भी अपने अगल बगल की जो भी महिलाएं होंगी उन्हें भी इसके लाभ से अवगत कराइए। तो जाइए, जल्दी देरी किस बात की, जाइए आवेदन करिए और इसका लाभ लीजिए। और हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। हम अगली बार फिर से लौटेंगे ठीक इसी तरह से एक नई जानकारी के साथ में, लेकिन वक्त बता रहा है अभी हमारा आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर आपके मनपसंद कार्यक्रम समुदाय के चर्चे में। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो टंटाविल पर और सुनते रहिए झाबुआ की आवाज। नमस्कार।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से काफी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इस रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के एप्लीकेशन को भी अपने फोन में डाउनलोड किया है। साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से ले रहे हैं। कृषि संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम, खेती बाड़ी प्रोग्राम, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी हमारे स्टूडियो में आते रहे हैं, हम भी आपकी आपके खेतों खलिहानों पर आते रहे हैं, आपसे रूबरू होते रहे हैं और आपसे जो खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुँचाते रहे हैं। साथ ही आपकी खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को भी हमने जाना है और उसके निदान हेतु हमने काफी किसान भाइयों की जो भी समस्या रही है, हमने कोशिश की है कि इसे केवीके के माध्यम से हम इसमें सुधार ला सके और केवीके के माध्यम से उनमें आने वाली नई नई योजनाओं के बारे में भी हम उसे उन तक पहुंचा सके। आदि प्रयासों में हम लगे हुए हैं और किसान भाई हमसे जुड़े रहिए, हम केवीके से जुड़ी हुई और अन्य योजनाओं के बारे में आप तक उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपकी समस्याएं जो कि आप हमें फोन के माध्यम से या हमारे 1-to-1 के माध्यम से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसे जारी रखिए। हम हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर अमल करते हैं और आपको उन समस्याओं से उभारने के लिए निरंतर प्रयासों में लगे हुए हैं।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, आज के अपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस खेती को लेकर हम आज चर्चा करने वाले वो है टमाटर की खेती। साथ ही हम जानेंगे गन्ने की खेती, इससे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी। कुछ किसान साथी जो हमारे स्टूडियो में आके गए हैं, उन्होंने कुछ किसानों ने गन्ना किया हुआ है, साथ ही कुछ किसान जो टमाटर करने के लिए काफी उत्सुक थे, उन्होंने भी अपनी राय हमसे रखी थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गन्ने और टमाटर की खेती को लेकर। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कब लगानी चाहिए, क्या देखरेख करनी चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कहाँ से हमें उनका बीज लेना चाहिए और उनका देखरेख, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए, जानेंगे सारी जानकारियों को विस्तार से।
5: किसान भाइयों बहनों, आलू के बाद टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि हमारे देश में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। हमारे देश में इसकी खेती साल भर की जा सकती है। देश के कई हिस्सों में टमाटर को उगाया जाता है और अगर आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन तो मिलता ही है, बाजार में इसका मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं, कई तरह के विटामिन से भरपूर है टमाटर, और कितनी ही ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनको रोकने में भी टमाटर का सेवन करने से मददगार साबित होती हैं। तो आइए आज आपको टमाटर की खेती के संबंध में दे कुछ खास जानकारियां।
6: टमाटर नाजुक सब्जी है, ज्यादा सर्दी गर्मी या जल जमाव को ये सहन नहीं कर पाती। इसकी खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, फिर भी बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6-7 होना चाहिए। सामान्य किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 400-450 ग्राम, जबकि संकर किस्मों के लिए 175-200 ग्राम बीजों की जरूरत होगी। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, काशी अमृत और काशी अनुपम कुछ उन्नत सामान्य किस्में हैं। संकर किस्मों में स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, वैभव, स्वर्ण संपदा, काशी हाइब्रिड 1 और काशी हाइब्रिड 2 बेहतर हैं। नर्सरी में बुआई से पहले बीज उपचार जरूर कर लें और बुआई के बाद बीज के ऊपर कंपोस्ट की पतली परत बिछा दें। 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब इसके खेत में रुपाई की जाएगी। रुपाई से पहले खेत की 2-3 बार अच्छी तरह जुताई करें और उसमें 7-10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद मिला दें। अगर आप सामान्य किस्म बो रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। सीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। वहीं असीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सामान्य किस्मों में प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल गोबर की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश की जरूरत होगी। संकर किस्मों के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद, 200 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटाश चाहिए। रुपाई के समय 1/3 नाइट्रोजन ही देना है, बाकी 1/3 25 दिन बाद और बाकी 1/3 40-45 दिन बाद दे दें। रुपाई के 20-25 दिन बाद पौधों को बांस का सहारा दें, इससे पौधे गिरेंगे नहीं और फसल भी बेहतर होगी। गर्मियों में हर 7 दिन बाद, जबकि सर्दियों में 10 दिन बाद पानी दें। टमाटर की पौधशाला में आद्र गलन बीमारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें अंकुरित बीज या तो जमीन की सतह से बाहर निकलने से पहले गल जाते हैं या अंकुरण के 15 से 20 दिनों के भीतर। बचाव के लिए पौधशाला में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वहीं जीवाणु मूर्छा रोग फूल और फल पर हमला करता है और उन्हें मुरझाकर सुखा देता है। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएंगे और जल निकासी का इंतजाम रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अगेती झुलसा फफूंदी जनित बीमारी है। इसमें गोल छल्ले नुमा धब्बे बनते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं। इससे पत्ता सूख जाता है। पछेती झुलसा में पत्तियां और तने पर धब्बे बनते हैं। बूंदा बांदी और कोहरा होने पर ये तेजी से फैलता है और पूरा पौधा काला होकर झुलस जाता है। बीजोपचार करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। छेदक कीट के लिए रुपाई के दौरान ही फ्यूराडॉन का इस्तेमाल करें, जबकि प्रकोप होने पर परर नीम से बने कीटनाशी का छिड़काव करें। इसके अलावा रुपाई से 10 दिन पहले खेत के चारों तरफ गेंदे के पौधे लगाएं या टमाटर की 8 से 10 कतारों के बीच एक कतार गेंदे के फूल की लगा दें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान

0: राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे देश की मिट्टी को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है, इसलिए अब मिट्टी की सेहत में सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान उत्तराबाई से, जो कि कई वर्षों से कर रही हैं जैविक खेती और किस तरह से लाभ हासिल कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मौजुबानी।
3: इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तब कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गांव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है तो कभी गायें बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गई, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी से जैविक कृषि कर रही हैं। उत्तराबाई के खेतों में लहलहाती फसलों और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उनके गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली है और धीरे धीरे जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराबाई ने जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण से जैविक कृषिकरण शुरू किया, वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुआ और धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी उनसे प्रेरित होकर जैविक पाठशाला में जाने लगे हैं। उत्तराबाई की मेहनत और लगन साफ तौर पर उनके खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों में देखकर प्रतीत होती है और यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार

0: अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
1: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, हमारे हित के लिए भारत सरकार हमेशा कुछ न कुछ नई योजनाएं लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी भी वजह से, अधिक बारिश की वजह से या सूखे की वजह से या कुछ भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर हमारी फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारी भारत सरकार करती है। तो इसीलिए इस योजना को फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, फसल बीमा योजना के क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा के रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
1: किसान साथियों, अभी आपने फार्मिंग इंडिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, जाना, समझा। और आइए आगे चर्चा करेंगे हम प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वेद और पुराणों का काफी बेहतर असर पड़ता है, इसलिए अथर्व वेद में ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। लेकिन आज के समय में धरती की बिगड़ती सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई विकल्प उभर कर सामने आने लगे हैं और उनमें से एक है प्राकृतिक खेती।
4: आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती है कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जब सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं, उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का, तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसल फलदार बहुवर्षीय पौधे होंगे, कुछ एक वर्षीय होंगे और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज होंगे, तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से प्यारे से भीली गीत का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज़।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को, लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
2: हमारे देश में फसल उत्पादकता कई विकसित देशों के मुकाबले कम है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नई तकनीकों से दूरी। लेकिन हमारे आज के कई ऐसे किसान हैं जो नई तकनीकों को अपनाने लगे हैं। ऐसे ही एक किसान है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी। जी हाँ, चौंकिए मत, हमारे आज के ये सफल किसान पहले प्रोफेसर हुआ करते थे। तो आइए मिलते हैं इनसे।
3: कम उत्पादकता यानी कम कमाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहा था। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन ना पैदावार अच्छी हो पा रही थी और ना ही आमदनी। उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए। यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया। इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया। इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है। चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। गन्ने की खेती दूसरे क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे। उस समय एक हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था। चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था। ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी। इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहां पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर AD पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया। इस मुलाकात का असर हुआ। डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी। वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहां की मिट्टी की जांच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे। सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया। हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया। फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया। इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया। 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई। इससे 20% तक नाइट्रोजन की बचत होने लगी। इतना ही नहीं, पानी की बचत के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया गया। मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का सहारा लिया और एकल कली सेट का उपयोग किया। इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई। बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे। नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे भी हासिल कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है।
0: किसान साथियों, अभी हमने गन्ने की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने जाना कि गन्ने के जो अवशेष है उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हमें सही प्रयोग किस तरीके कैसे करना चाहिए, इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आइए जानते हैं अगस्त महीने में, आने वाले मंथ अगस्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे बागवानी में। तो आइए डालते हैं एक नजर।
3: लीची में गुटी लगाने का ये उपयुक्त समय है। अंगूर की नई फूटी हुई शाखाओं को 1 मीटर लंबाई के बाद काट दें। फसल में पत्ते खाने वाली सुंडियों का नियंत्रण भी आवश्यक है। नए बागों में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार निकालकर थालों को साफ रखें। पौधों के मूल वृंत में यदि फुटाव आ रहा है तो उसे निकाल दें। पपीते के पौधों की रुपाई इस समय समाप्त कर लेनी चाहिए। अमरूद की फसल को फल मक्खी से बचाने के लिए 0.1% मेलाथियन का छिड़काव करें। दवाई प्रयोग के 15 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करें।
2: हमारे देश में दलहनी फसलों का अहम स्थान है। दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है और सबसे ज्यादा खपत भी यही होती है। दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का तो ये प्रमुख स्रोत माना जाता है। बात जहां तक दलहनी फसलों की खेती की आती है तो किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूंग और उड़द की। आइए देखते हैं मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
3: दलहनी फसलों में मूंग एवं उड़द की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूंग की फसल को खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। उड़द को मुख्य रूप से खरीफ में उगाया जाता है। अधिक उपज के लिए मूंग एवं उड़द की बुआई कतार में करनी चाहिए। मूंग और उड़द फसल की खेती और उचित देखभाल कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मूंग और उड़द फसल की देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए।

0: दलहनी फसल मूंग और उड़द में कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये फसलें अपने वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाई फसल में पोषक तत्वों की कमी लगने पर यूरिया का इस्तेमाल करें। मूंग और उड़द की फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। हाथों से ही फसलों में निराई गुड़ाई करें। अगर बात करें कीटों की तो बरसात के समय दलहनी फसलों में पीला मोज़ेक वायरस का खतरा रहता है। फली बनने की अवस्था में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये सफेद मक्खी नामक कीट द्वारा फैलता है। ऐसे में इमिडाक्लोप्रिड के इस्तेमाल से इसको फैलाने वाले कीट को मार सकते हैं। इसके अलावा अभी के समय देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी खेतों में लगे मूंग और उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अधिक वर्षा वाले इलाकों में जल निकासी का उचित व्यवस्था करें ताकि फसलों को नुकसान न पहुँचे।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटियाभील 90.8 FM झाबवा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए नजर डालते हैं एक सफल किसान की कहानी के ऊपर। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती का एक जीता जागता उदाहरण हमें दिया है।
2: सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक एवं कृषि विशेषज्ञ है। इन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है और ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि करने के लिए न ही किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और न ही बाजार से अन्य औषधियां खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने भारत में इस विषय पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वो सतपुड़ा आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ काम करते थे। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में वो अपने पिता के साथ कृषि करने लगे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन कॉलेज में रासायनिक कृषि सीखने के बाद इन्होंने भी रासायनिक कृषि करना शुरू किया। वर्ष 1986 से 88 के दौरान सुभाष पालेकर ने जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि जंगलों में एक स्वविकसित, स्वपोषित और पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था विद्यमान है। जंगलों में एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिन पर वनस्पतियों का विकास होता है। उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया और वर्ष 1979 से 1995 के दौरान जंगल की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अपने खेत पर परीक्षण करके देखा। इन 6 वर्षों के शोध कार्य के दौरान उन्होंने 154 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की। इसके बाद सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की तकनीक आरंभ की, जिसका प्रचार उन्होंने कार्यशालाओं, सेमिनार के माध्यम से किया और इस विषय पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखी और भारत भर में किसानों के द्वारा स्थापित कृषि के हजारों मॉडल भी विकसित किए। सुभाष पालेकर का अधिकतर समय किसानों के प्रशिक्षण शिविर में बीतता है। ये किसानों को निशुल्क कृषि प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की खेती का प्रशिक्षण देने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते रहे हैं। आज इस पद्धति को अपनाकर लाखों लोग बिना लागत के खेती से अपनी आय बढ़ाते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को विकसित कर कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया है। इनके इस प्रयास से खेती को नई दिशा तो मिली ही है, साथ ही इन्होंने किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर इन्होंने कृषि को और भी मजबूती दी है, साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले रास्ते से भी अवगत कराया है, जिससे फलस्वरूप किसान अपनी आय दोगुनी करने में भी सफलता हासिल कर सकेंगे।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आज खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने टमाटर की खेती, गन्ने की खेती, मूंग की खेती और उड़द की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने जुनून, समर्पण और जीवन अनुभवों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अरविंद कुमार सक्सेना जी, एक ऐसा नाम जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में लंबी और सफल सेवाएं देने के साथ साथ संगीत के प्रति अपने प्रेम को भी हमेशा जीवित रखा। आईसीआईसीआई बैंक से सेवानिवृत्त होने से पहले आपने बैंक ऑफ राजस्थान में भी अपनी सेवाएं दी। बैंकिंग और यूनियन गतिविधियों की व्यस्तताओं के बीच भी संगीत आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहा। बचपन से ही हारमोनियम वादन, शास्त्रीय संगीत की साधना और फिर वर्षों बाद दोबारा संगीत शिक्षा से जुड़ना आपकी यात्रा वास्तव में बेहद ही प्रेरणादायक रही है। आपने महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी से संगीत की नई शुरुआत की। कई मंचों पर आपने प्रस्तुतियों से श्रोताओं का दिल जीता, साथ ही गीत संगीत ग्रुप ऑफ म्यूजिक कोटा के माध्यम से संगीत प्रेमियों को एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री अरविंद कुमार जी सक्सेना का, और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा, संगीत साधना और यादगार अनुभवों के बारे में। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, मेरा भी सबको नमस्कार, श्रोताओं को और आप सबको।
1: तो चलिए अरविंद जी, शुरुआत करते हैं आपकी बातचीत से, और शुरुआत आपके बचपन से ही करते हैं। कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अर्ली एजुकेशन के बारे में हमें श्रोताओं को बताइए, जिससे पता लगे कि किस बैकग्राउंड से आप का संबंध रहा है, बताइए प्लीज।
2: मेरा जन्म झालरापाटन जिला झालावाड़ में हुआ था, और मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे।
1: अच्छा।
2: प्रारंभिक शिक्षा जो मेरी सवाई माधोपुर से हुई, क्योंकि उनका जॉब इस तरह का था, ट्रांसफर बहुत होते थे, उस समय वहाँ माधोपुर था, सवाई माधोपुर, तो वहां से मैंने पहली क्लास तो वहां से की। उसके बाद हम लोग कोटा ट्रांसफर हो गया पिताजी का, और उसके बाद हमेशा कोटा में ही रहे, सारी शिक्षा कोटा में ही हुई है मेरी।
1: ओके, वंडरफुल। अच्छा, तो ये बताइए, आप कोटा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी हो गया है अब तो हमारे देश का, तो आपने बताया कि आप कायस्थ परिवार से हैं, जहां संगीत का वातावरण शुरू से ही होता है। तो अभी बताइए, परिवार में भी कोई लोग संगीत से जुड़े थे, कोई संगीत का शौक था, कैसे था ये संगीत की परंपरा, कैसे रही?
2: देखिए, मेरे घर में लगभग सभी लोग, मेरे बड़े ब्रदर को छोड़ के सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। मेरी माता जो थी वो भी हारमोनियम भी बजाती थी, और ढोलक में उनके बहुत पारंगत थी।
1: अच्छा।
2: पहले मेरे तबला बजाते थे, उन्होंने बाकायदा शिक्षा ली हुई थी तबले की। और घर में सारे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सारे थे, हारमोनियम, ढोलक, तबला वगैरह, तो हम लोग शुरू से ही उसी माहौल में रहे। बड़ी सिस्टर है, वो भी मेरी हारमोनियम बजाती थी, और मदर कभी कभी जब भी गृहस्थी के कामों से फुर्सत होती थी वो बजाती थी। बस उनको देख करके मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे भी लगाव हो गया हारमोनियम से, शुरू हो गया, तब से ही बचपन से ही बजा रहे।
1: तो हारमोनियम से आपका जुड़ाव शुरू से ही है, तो गाने के में अपने आपके परिवार में गाने का किसको शौक था? आपकी सिस्टर्स गाती थी या मदर गाती थी?
2: सभी गाते थे, मदर भी गाती थी, सिस्टर भी गाती थी। दो सिस्टर है, तो बड़ी वाली तो दोनों ही करती, छोटी भी गाती है लेकिन वो गाती कम है, उसको भी ढोलक के अंदर मास्टरी है, ढोलक बहुत बढ़िया बजाती है।
1: अरे वाह।
2: तो लगभग सभी हमारे परिवार में, मैं दो भाई और दो बहने हैं, सिर्फ मेरे बड़े भाई थोड़ा सा अलग रहे, वो सुनने में रहे, कभी गाया नहीं, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं, बाकी बाकी सभी लोग संगीत से जुड़े हुए थे।
1: अरे चलो तो मैं थोड़ा सा और पूछता हूँ, आप ये बताइए आपकी बचपन की क्या यादें हैं? इनफैक्ट आपका बचपन में भी अरविंद नाम ही है घर में, या कुछ घर में आपके परिवार वाले आपको कुछ किसी और नाम से भी बुलाते हैं? कोई जैसे बचपन में नाम होते हैं ना, मुन्ना है ऐसा, इस तरह के छोटे निकनेम्स होते हैं
2: घर में? क्या अक्षु के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मेरे को पहले हमारे जो ताऊ जी थे उन्होंने मेरा नाम रखा था अश्विनी,
1: अश्विनी। अच्छा अच्छा,
2: तो उसके अच्छा, वो अच्छा। अच्छा। अच्छा। कहने लगे, लेकिन मेरे को वो नाम पसंद आया नहीं, और मैंने अश्विनी कुमार, जब पहले क्लास में मैं भर्ती हुआ तो मैंने अपना नाम अरविंद कुमार सक्सेना लिखा दिया।
1: ओके
2: ओके, परिवार के लोग मेरे को अश्विनी के नाम से जानते हैं, यहाँ तक कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ लाड़पुरा से, लाड़पुरा कोटा से, वहां के भी जो पुराने लोग हैं मेरे साथी संगी हैं वो इसी नाम से जानते हैं।
1: हाँ हाँ, लाड़पुरा तो रामपुरा के बाद वाली जगह है, बड़ी अच्छी अंदर है, मतलब ओल्ड सिटी के अंदर ही है रादर,
2: ओल्ड सिटी में।
1: तो अरविंद जी चलिए थोड़ा सा वातावरण को संगीतमय बनाते हैं। आपने संगीत की इतनी बात कर ली, बचपन की बात हो गई, आपकी माताजी की बात हो गई, आपकी बहनों की बात हो गई, तो कुछ क्या इच्छा हो रही है अंदर से कोई गाना अगर हम इस स्टेज पे एक थोड़ा सा सुन लें और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं तो थोड़ा माहौल बन जाएगा और आप भी सहज हो जाएंगे, तो एक गाना सुनाइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना।

0: देश का गाया हुआ है वो।
1: बिल्कुल
0: मैं सुनाता हूँ आपको। जिंदा
1: जी।
0: हूँ इस तरह के गम में, जिंदा

0: नहीं, जिंदा हूँ इस तरह के गम में, जिंदगी नहीं। जैसा
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो यहूदी फिल्म का गाना है, मेरा भी फेवरेट
0: जी
1: गाना है, मुझे बहुत
0: जी
1: पसंद है। दिलीप कुमार की पिक्चर थी और शायद मीना कुमारी थी या मधुबाला थी, लेकिन बहुत बढ़िया पिक्चर थी। और ये तो लैंडमार्क गाना है मुकेश जी का, तो मजा आ गया। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, अब तो आप सहज हो होंगे। अब आई एम श्योर हमें आप
0: जी
1: कुछ से बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिलेंगे।

0: चलिए, है ना, फिर हम इस
1: जी
0: बातचीत को जारी रखते हैं। और अच्छा, आप ये बताइए कि बैंकिंग क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या शुरू से आपने सोचा था बैंकिंग में आएंगे, या एक इत्तफाकन आप बैंक की तरफ आ गए? कैसा रहा बैंकिंग का सफर आपका?
1: मैंने कभी भी बैंकिंग में आने की सोचा नहीं था। हालांकि मैं कॉमर्स से ही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा कॉमर्स से ही किया था,
0: जी
1: लेकिन मैंने बैंक में आने की कभी सोचा नहीं था। लेकिन नौकरी की तलाश में था, कई जगह टेस्ट इंटरव्यू दिए और बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया।
0: ओके
1: सेवेंटी
0: ओके
1: सेवन में मैंने ज्वाइन किया था बैंक को।
0: अच्छा, 77 की ज्वाइनिंग है आपकी, वेरी
1: जी
0: गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए कि जैसे बैंक ऑफ राजस्थान में आप रहे, जो बाद में ऑब्वियसली जाके आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज हो गया,
1: जी
0: और थोड़ी यूनियन में भी आप सक्रिय रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह भी रहे हैं,
1: जी
0: तो ये किस तरह का, ये थोड़ा चैलेंजिंग काम था आपको, कैसा रहा इसमें? आप बहुत इन्वॉल्व थे या तो
1: हाँ,
0: मैनेजमेंट से
1: मैं
0: कभी
1: बहुत
0: आपकी एक्टिविटी, मैनेजमेंट से आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहता था यूनियन की वजह से?
1: एक बात ये थी कि देखिए, टकराव तो निश्चित रूप से, अगर आप यूनियन लीडर हैं तो मैनेजमेंट से होना ही है।
0: जी
1: लेकिन फिर भी हमारी साख ये थी कि हम जिस चीज के लिए हमने कोई वचन दे दिया, हाँ कर दिया, तो हम उससे कभी उसको बिट्रे नहीं करते। ये एक हमने ईमानदारी से वो बात करी। तो मैनेजमेंट को भी हमसे बात करने में ये होता था कि जो इन्होंने कह दिया वो होके रहेगा। ये एक हमारी साख थी। और कभी हमने जैसे जो इसमें होता है राजनीतिक करियर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर जैसा होता है, ऐसा हमारा कभी भी माहौल हमने होने नहीं दिया। हालांकि सब जगह राजनीति होती है, पर हमने इस तरह
0: हाँ
1: का, हमारे जो विद इन यूनियन, यूनियन के अंदर भी कुछ राइवल्स होते हैं,
0: हाँ
1: उन तक के
0: नेचुरली
1: भी हमने कभी, किसी का भी काम आया हमने उसको करा के दिया है। कभी ये नहीं कि भाई ये हमारे पक्ष का आदमी नहीं है या ये हमारे पक्ष का है, ऐसा हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया।
0: वेरी गुड।
1: ये एक हमारी
0: और
1: साख रही है आखिर तक। जब तक भी मर्जर हुआ तब तक भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, और करीब 40 की एज में मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया था स्टेट का। और राजस्थान स्टेट का मतलब ये है कि बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान बेस्ड की बैंक थी,
0: बैंक
1: और उसमें बाहर तो मुश्किल से 50-60 ब्रांचेज होती थी। तकरीबन
0: राइट राइट
1: 275 ब्रांच हमारी यहाँ राजस्थान के अंदर थी।
0: जी
1: वो सारा मेरे को देखना होता था, उनका सभी कर्मचारियों का जो भी हित होते थे उनको साधने होते थे। बस ये मैनेजमेंट से तो मेरा कोर्डियल इसलिए रहा कि उनको ये विश्वास था कि अगर ये बात कुछ बात कह रहे हैं तो उसमें दम है। मैं कभी झूठी बात नहीं कहूंगा कि किसी को झूठा दिलासा नहीं। मेंबर्स को भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और वो नहीं हुआ। अगर कह दिया तो इसका मतलब होना है, पक्का है वो।
0: आप, और इसका मतलब है कि जब इस तरह की आप पर्सनैलिटी थे तो आप अपने काम के प्रति भी समर्पित थे। मैनेजमेंट को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने काम से कोताही
1: जी
0: नहीं करते। बिल्कुल
1: हाँ जी हाँ, यही था। मैं 10 से 5 बिल्कुल, मेरे साथी बल्कि बड़े बड़े अफसर बन गए बाद में, तो वो यही कहते थे कि भाई आपकी वजह से हमारे तो ये, मैं कैश में हेड कैशियर रहा,
0: अच्छा अच्छा
1: तो वो कहते हैं कि आपकी वजह, आपने यार इतना काम ले लिया कि हमारे तो ये हाथ उंगलियां हैं जो है कांपने लगी।
0: चलिए चलिए,
1: इस तरह का रहा है। और मैनेजमेंट ने भी इस बात की सराहना की है कि मतलब जितना ये यूनियन में इन्वॉल्व है उतना ही अपने काम में भी
0: काम
1: उतना
0: के प्रति।
1: ही। जी हाँ
0: तो अभी बताइए, इतनी व्यस्त जीवन के बावजूद आप कैसे उस दौर में भी संगीत से आपका जुड़ाव रहा? क्या उस दौर को कैसे याद करते हैं आप? उस दौर में भी संगीत से
1: बैंक
0: थोड़ा बैंक में भी जुड़ाव था?
1: में भी जुड़ा था, मैं तो स्कूल में भी सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भाग लिया। बैंक के
0: अच्छा
1: अंदर मैं एक, हमने क्लब बनाया हुआ था, उसमें प्रोग्राम करते थे सालाना।
0: अच्छा
1: उसमें मैं खाली गाया नहीं लेकिन डायरेक्शन रहता था मेरा सारा उसमें।
0: अच्छा अच्छा ओके। तो चलिए फिर इस पुराने दौर को जो आपने बैंक ऑफ राजस्थान का याद किया है, हमें भी याद है राजस्थान का ये प्रमुख बैंक था, तो उस दौर को याद करते हुए कोई अच्छा सा ऐसा नॉस्टैल्जिक गाना सुनाइए, जरा मजा आए हमारे को भी उस दौर को, हम लोग भी याद करें अपने पुराने दौर को बैठ के, हमारे श्रोता भी याद करें, कुछ बढ़िया सा गाना सुनाइए।
1: खालिद महमूद का गाना सुनाता हूं।
0: अरे वाह वाह वाह, खालिद महमूद तो मेरे फेवरेट है, स्वागत है स्वागत है।

0: तू समझ के क्यों मुझे।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपने तलत महमूद की याद दिला दी। एक जमाने में तो तलत महमूद गजल के बादशाह हुआ करते थे हमारी फिल्म
0: बिल्कुल
1: इंडस्ट्री में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल बढ़िया, बहुत। तो एक दौर था, इनका ही दौर था। बाद में फिर ये सब आते गए एक के बाद एक में।

0: चलिए फिर हम बातचीत करते हैं। जैसे आप 1988 में आप स्वर्गीय श्री दिनेश डांगी जी से आपके संगीत सीखने की शुरुआत कैसे हुई, वो संगीत से आपने शुरुआत कैसे की सीखने
1: वो
0: की?
1: मुझे एक शौक था कि मैं चूंकि गाता तो था, हारमोनियम भी बजाता था, लेकिन मेरी इच्छा थी क्लासिकल सीखने की। तो इस वजह से मैंने उनसे संपर्क करके और उनसे मैंने ये सीखा। और ये उस समय मैं यूनियन में बहुत बिजी हुआ करता था और मेरे दिन रात का कोई पता नहीं होता था। कई बार पूरी पूरी रात भी जगना था, कई बार 1 बजे 2 बजे तक भी सोते थे। एम्प्लॉयज के वो बनाने होते थे, कभी डिफेंस।

0: तो था शुरू से ही।
1: तो अब जब ये आपने डांगी जी ने आपको सिखाना शुरू किया तो कौन कौन से राग उन्होंने सिखाए या शास्त्री जी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है खास तौर से शास्त्रीय संगीत की?
0: उन्होंने यूं मेरे को यमन सिखाया,
1: ओके
0: राग जौनपुरी सिखाया,
1: अच्छा
0: और एक तो राग काफी सिखाया, एक वृंदावनी सारंग करके राग वो सिखाई, राग
1: अच्छा
0: भैरव सिखाई। हाँ ये मेरे को सिखाया था उन्होंने उस समय। एक बागेश्वरी राग, बागेश्वरी भी काफी पॉपुलर है और फिल्मी गाने तो बहुत इस पर बने हुए, ये
1: ओके
0: सिखाया।
1: ओके। तो अब इतने सालों के बाद में फिर गैप के बाद में 2023 में आपने दोबारा संगीत सीखने की प्रेरणा, ये दोबारा कैसे आपको जैसे शौक जागा, तो फिर ये किसी ने याद दिलाया आपको या कोई
0: नहीं
1: ट्रिगर था जैसे
0: दरअसल
1: या?
0: हुआ हुआ ही हो कि जब मैं रिटायर हो गया, मैंने 13 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था,
1: ओके
0: मेरा ड्यू
1: ओके
0: था 16 में, लेकिन मैंने
1: ओके
0: 13 में रिटायरमेंट ले लिया था।
1: अच्छा
0: और उसके बाद शायद कुछ कारण ये भी रहे होंगे कि मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहा हूँ। अब वो जो लोनलीनेस थी, जो अकेलापन था, वो शायद ऐसा घर कर गया कि मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था।
1: ओहो अच्छा।
0: हाँ फिर उसके बाद मैं काफी इलाज भी चला, लेकिन वो दूरी मेरी उसी से, डिप्रेशन उसी से दूर हुआ कि मैंने संगीत शुरू किया। दूसरे मैंने 65 साल की उम्र में उर्दू सीखना शुरू किया,
1: उर्दू
0: और दो
1: सीखना शुरू
0: साल
1: किया। अरे वाह
0: हाँ
1: वाह अच्छा वेरी गुड
0: तो 2 साल मैंने उर्दू की शिक्षा ली, क्योंकि
1: ओके ओके
0: इसका बहुत ज्यादा फिर पुराने फिल्मी गानों में उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है।
1: जी जी
0: तो अगर
1: बिल्कुल
0: हमको, अब लोग कहते हैं ना फील आना चाहिए गाने में, वो
1: जी
0: फील हमको जब उस वर्ड का मायने नहीं पता तो
1: जी
0: फील
1: बिल्कुल
0: आएगा कहाँ से। तो मुझे बहुत कंपलसरी लगा कि ये तो सीखना जरूरी है। हालांकि उर्दू का मुझे बचपन से भी शौक था, और पहली जमात जितना तो मैंने पढ़ा था, पहले भी अलिफ बिक वगैरह पहले भी पढ़े बचपन में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सीख पाए थे। 65 साल की उम्र में फिर मैंने ट्यूशन लगाई और 2 साल तक मैंने उसकी शिक्षा ली। अब मेरे को मतलब लिखने में, पढ़ने में, उर्दू पढ़ने में, लिखने में कोई दिक्कत
1: अरे वाह
0: नहीं। जी
1: उर्दू उर्दू आप पढ़ लेते हो,
0: जी
1: वंडरफुल,
0: हाँ
1: इट्स
0: पढ़
1: ग्रेट
0: भी लेता हूँ,
1: फैशन।
0: लिख भी लेता हूँ।
1: हाँ, कायस्थ परिवारों में उर्दू तो काफी आती है, जैसे हम जैसे लोगों को भी, हमारे परिवार में फारसी वगैरह भी आती थी नाना दादा को, लेकिन हम लोगों को वैसे बोलने के शब्द आते हैं क्योंकि शेरो शायरी का जिनको शौक होता है उनको उर्दू आ जाती है।
0: वो बिल्कुल
1: तो हाँ, लेकिन आपने लिपि सीख ली है और आप लिख भी लेते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये
0: बिल्कुल
1: तो मेहनत का काम है भाई।
0: मेहनत करता है। अरे इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जो भी मेरे साथी संगे संगीत के भी, मैं कहता हूँ हमेशा स्टूडेंट बन के रहना चाहिए,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: कभी भी
1: और
0: अपने
1: ये
0: को ये नहीं समझे कि हमें तो सब आता है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता अपने को, 10% भी नहीं आता, बहुत कुछ है सीखने को। और हमेशा स्टूडेंट बन के रहे, विद्यार्थी बन के रहो, तो सीखने को बहुत पड़ा है, बहुत सीख सकते।
1: नहीं, और ये बात आपने बहुत जोरदार कही कि जो अगर गाने के लफ्ज का मतलब आपको नहीं पता है तो कभी आपको वो
0: जी
1: फील नहीं आएगी, और खास तौर से
0: बिल्कुल
1: गजलों की अदायगी में तो उर्दू काफी होती है, इवन
0: बिल्कुल। और
1: ये
0: फिल्मी
1: तो
0: गानों
1: और
0: में जो पुराने गाने हैं फिल्मी है ना, उनमें भी उर्दू का इतना इस्तेमाल है
1: काफी
0: कि बहुत सारे मेरे साथ में जो सीखने जाते थे, तो
1: जी
0: हम गाने वाने जब गाते थे फिल्मी कई बार आपस में, तो वो उसका मतलब नहीं समझते थे, गाते थे लेकिन मतलब नहीं समझते थे। हम गाते थे तो बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन मैंने कहा आपके समझ में क्या आया, वो समझ नहीं पाते थे। फिर उनको मतलब पर निकाल के बताते थे कि इसका ये मतलब है। जैसे इसमें एक वो मैंने गाना वहां पे LBS में हमारा प्रोग्राम हुआ था, एक LBS कॉलेज कोटा में, तो उसमें वो था बहारों ने मेरा चमन लूट कर एक गाना है।
1: बाहरों ने मेरे एग्जाम क्यों दे दिया।
0: तो उसमें एक लाइन थी, मुझे क्या पता था कभी इश्क में
1: हाँ
0: रकीबों को कासिद बनाते नहीं।
1: कासिद, बिल्कुल सही बात।
0: जी
1: ये देवर फिल्म का है जहां तक मुझे ध्यान है,
0: देवर का, बिल्कुल देवर का ही मेरे
1: देवर का फिल्म का
0: ख्याल
1: गाना है, धर्मेंद्र वाली पिक्चर थी, बिल्कुल
0: से।
1: सही
0: हाँ
1: कहा।
0: धर्मेंद्र की पिक्चर। तो अब मैंने लोगों को पूछा है भाई ये रकीबों को कासिद बनाते नहीं इसका मतलब क्या है, तो तो लोगों को पता नहीं।

0: हाँ
1: गाना बहुत
0: वो
1: अच्छा है, बस गाना अच्छा है, फिर उनका मतलब समझ आए।
0: लोगों को कासिद का तो मतलब ही नहीं पता होगा कि मैसेंजर होता है
1: हाँ
0: उसका
1: हाँ
0: मतलब, वो उनको पता ही
1: मैसेंजर
0: नहीं
1: होता है, और रकीब मतलब कॉम्पिटिटर,
0: रकीब, राइवल राइवल राइवल,
1: राइवल, हाँ कॉम्पिटिटर है
0: प्रतिद्वंदी
1: राइवल,
0: प्रतिद्वंदी
1: हाँ
0: प्रतिद्वंदी कहते
1: प्रतिद्वंदी, हाँ जी
0: हैं। तो इश्क में वो और उसकी पूरी पिक्चर की थीम ही ये थी देवर की।
1: जी हाँ
0: चलिए
1: जी
0: तो मजा आ गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात रही अपनी। और
1: जी
0: मैं आपको शायद गजल के आप भी शौकीन हैं, मैं भी शौकीन हूँ, तो
1: हाँ
0: ये जगजीत के आने के बाद थोड़ी गजलों की भाषा सहज हुई है, सिंपल हुई है, लेकिन उससे पहले
1: हाँ
0: जितनी गजलें थी, भले बेगम अख्तर
1: जी
0: हो, तलत महमूद हो,
1: बेगम
0: या
1: अख्तर को बहुत
0: वाह
1: सुना है, गुलाम
0: वाह, तो वो सारी
1: अली भी
0: तो
1: सुना
0: ना, तो उर्दू बड़ी मतलब गाढ़ी
1: है, हाँ
0: होती
1: गाड़ी
0: थी, हाँ गाढ़ी होती थी तो। लेकिन चलिए, तो आपकी ये जो महेश मुसाफिर म्यूजिक एकेडमी जो आपकी शुरू हुई,
1: जी हाँ।
0: इससे कैसे जुड़े आप, इससे क्या क्या
1: ये
0: हुआ?
1: इन्होंने दिल्ली से शिफ्ट होके कोटा आए थे, ये कोरोना के दौरान
0: ओके
1: वहां पे, क्योंकि उनकी लाइव क्लासेज होती थी तो लोग वहां पे गए, जाना बंद कर दिया लोगों ने
0: हाँ
1: लॉकडाउन के वजह से,
0: हाँ
1: और
0: अच्छा
1: किराया दिल्ली में चूंकि बहुत महंगे हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो उनका किराया जाता था इंस्टीट्यूट का, तो वो रहने वाले भी इधर रामगंज मंडी साइड के थे, तो
0: ओके
1: उनके फादर ने कहा कि भाई तुम कोटा शिफ्ट हो जाओ, कोटा सेंटर भी है बड़ा है ना, रामगंज मंडी से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोटा बड़ा सेंटर है तो वहां पर तुम्हारा ठीक बैठ जाएगा, और किराए वराए भी बहुत इतने अधिक नहीं है जितने मेट्रो में। तो वो
0: ओके
1: उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाला ही था, तो उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा था उसमें इनवाइट किया था उन्होंने, तो वहाँ गाने गए थे हम, तो बस वहां से उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने कहा मैं किस तरह से ये चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्लासिकल का मुझे शौक था इसलिए मैंने दोपहर ज्वाइन कर लिया,
0: अच्छा
1: और उसके बाद ही मेरा ये सारा जो डिप्रेशन का जो सीन था वो सारा उसी के बाद खत्म हुआ।
0: ओके ओके ओके, जब आप इससे जुड़ गए, वेरी वेरी। तो चलिए फिर उसी दौर को याद करते हैं, कोई अच्छा सा गीत या गजल जो भी आपकी पसंद हो सुनाइए, फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।
1: कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया आँख न जाने दिल पहचाने,

0: मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ये गाना मेरे मोती को बहुत पसंद है।
1: वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये तो क्लासिकल शायद मन्ना डे जी का गाना।
0: हाँ मन्ना डे का है,
1: मन्ना डे जी का गाना बहुत बढ़िया। हाँ नहीं थोड़ा सा मुझे तो ये तो पता है कि थोड़ा सा म्यूजिक के बिना ऐसे गाना थोड़ा सा एक सहज नहीं होता है, लेकिन चलिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा।

0: तो चलिए आप थोड़ी बातचीत को आगे चलते हैं। आप स्टेज शोज पे आते हैं, आपके आपने स्टेज शो में भी भाग लिए हैं, तो पहला स्टेज शो कौन सा था, कैसा अनुभव था आपका जब पहली बार आपने स्टेज शो में भाग लिया?
1: देखिए, वैसे तो मैं स्कूल टाइम में भी मैंने स्टेज पे गाया हुआ है,
0: जी
1: और उसके बाद जो यहाँ पे स्टेज शो किया हमने, तो स्क्वायर 36 में हमने पहला शो किया था।
0: अच्छा,
1: वहां पर जो गाने गाए थे तो यही था जो आपको अभी सुनाया मैंने, जाने कहाँ गए वो दिन।
0: ओके,
1: उसके अलावा एक मेरे कुलीग थी वहां पे, संगीत साथ में सीखती थी, उषा
0: अच्छा
1: पोरवाल जी, उनके साथ मैंने ये डुएट किया था, ये दिल
0: अच्छा
1: तुम बिन कहीं लगता नहीं।
0: ओके ओके ओके
1: उसके बाद फिर ये MBS में जो प्रोग्राम हुआ जिसमें बाहरों ने मेरा चमन लूट कर गाना मैंने सुनाया,
0: हाँ
1: और जयपुर से जो टीम आई थी उन लोगों के कमेंट किए थे कि तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ये मुकेश जी कहाँ से आ गए, ये उन लोगों का
0: तो
1: गाना पता नहीं मैं कहाँ तक ऐसा गा पाता हूँ नहीं गा पाता पता नहीं, लेकिन उन लोगों के कमेंट
0: ओके हाँ, तो मुकेश जी को आप आइडियलाइज करते हैं, मतलब उनको काफी
1: जी
0: फॉलो करते हैं, उन्हीं
1: हाँ
0: के गीत ज्यादा
1: मुकेश
0: गाते हैं
1: के ही
0: आप।
1: मैं फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद तो मेरे को जब मैं ज्यादा गुस्सा तो मैंने देखा कि ये कंपेयर नहीं किया सकता किसी को भी किसी भी गायक
0: अरे
1: से,
0: बिल्कुल
1: सबकी अपनी अपनी एक जगह है अलग, रफी साहब की
0: बिल्कुल
1: अलग जगह है, तलत महमूद साहब की अलग जगह है, मन्ना डे की जगह कोई नहीं ले सकता, हेमंत कुमार की अलग है, एस डी बर्मन की अलग है नहीं? और KL सहगल, ये सब मैंने सुने हुए, KL सहगल है, KC डे, पंकज मलिक है, ये सारे सुने हुए।
0: पंकज मलिक सी एच आत्मा, सही बात है।
1: हाँ बेगम अख्तर है, गुलाम
0: चलिए
1: अली खूब सुना है।
0: बच्चे, तो अभी जैसे चित्रांश आर्ट कल्चर द्वारा आयोजित
1: जी
0: प्रोग्रामों में भी आप प्रस्तुति देते हैं, तो ये किस तरह से रहता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, क्या करते हैं इसको?
1: ये जयपुर में राकेश श्रीवास्तव जी हैं, वो इस ग्रुप को चलाते हैं, और ये जो जवाहर कला केंद्र में मेरे प्रोग्राम एक हुआ था उसका
0: अच्छा
1: टाइटल था 100 सॉन्ग्स ऑफ मुकेश।
0: ओके ओके
1: तो
0: अच्छा
1: हाँ उसमें वो करीब 10 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें मैंने गाया था सोलो एक, और एक डुएट गाया था, एक मेरी वो सिंगर है डॉक्टर निधि सक्सेना,
0: अच्छा
1: वो रिटायर्ड, वो गायनी के डॉक्टर है, रिटायर हो गई, वो भी संगीत की बहुत शौकीन है, बहुत
0: ओके
1: अच्छी आवाज है, तो उनको उनके साथ मैंने वहां गाया था, वो करीब ऑल इंडिया के ही था, वहां काफी लोग आए थे, राजस्थान के तो थे ही, उसके अलावा भी ग्वालियर के, भोपाल के, बाहर के भी काफी
0: अच्छा
1: लोग, ऑल इंडिया लेवल का ही शो था। जी
0: तो आपके थोड़ा सा ये बताइए कि कॉलेज जीवन या बैंकिंग कैरियर के दौरान ये जो आप इतने गाने गाते होंगे तो बड़े पॉपुलर होंगे आप, कोई ऐसी खास यादगार या मेमोरेबल इवेंट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपके गायन से जुड़ा हुआ, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ? आपकी शादी तो गायन की वजह से नहीं हुई, कुछ बताइए किस
1: नहीं नहीं
0: तरह?
1: नहीं शादी तो इस वजह से नहीं हुई है, मेरी
0: अच्छा
1: पत्नी भी जो है बैंक ऑफ राजस्थान में ही थी,
0: ओ
1: और उस
0: अच्छा
1: समय
0: अच्छा
1: ना जयपुर में उनका पोस्टिंग था, और हमारे शादी के टाइम से वो जयपुर में थी, बाद में
0: ओके
1: कोटा
0: ओके
1: ट्रांसफर लिया, और क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि मैं तो इसमें यूनियन में बहुत ज्यादा सक्रिय हूँ, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है सब, तो मैंने वहां गाने वाने नहीं गाए कभी।
0: अच्छा
1: हाँ कभी पिकनिक विकनिक पे जाते थे तो सुना देते थे, बाकी वहां पे तो वो बिल्कुल एक उल्टा मामला हो गया कि
0: उल्टा
1: जो आदमी
0: मामला।
1: चिल्ला चिल्ला के नारे लगा रहा है और भाषण दे रहा है और वो एक तरफ गाना भी गा रहा
0: सही बात
1: है।
0: तो चलिए, आपने स्टेज शोज पे गाने गाए, अगर स्टेज शोज पे गाया हुआ कोई एक गाना आपको याद आ रहा हो तो आप सुना दीजिए, फिर तो आने दीजिए उसको, कोई गाने को।

आए बसे परदेस सजनवा सौतन के मर माए नाही लीनी वो खबरिया।

0: में करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार।
1: चलिए सर, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में तीसरी कसम का गाना है ये, और बहुत ही बढ़िया। मुकेश जी और शैलेन जी की ये जो पिक्चर थी, वैसा रहमान की एक्टिंग, क्या बढ़िया पिक्चर थी। तो आपने उसकी याद ताजा दिला दी।

0: नहीं, बहुत सही बात है। मेरे को भी याद आ रहा है, ये बहुत ही पुरसुकून गाना है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, वी शांताराम की किसी पिक्चर का है मेरे ख्याल में, मुझे
1: हाँ,
0: उतना
1: खैर
0: याद
1: वी शांताराम की फिल्म का था और ये हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी शांताराम की पिक्चरों में संध्या एक हीरोइन हुआ करती थी, वो बहुत आती थी मुझे
1: नहीं।
0: याद। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब रिटायरमेंट के बाद फिर से कितना संगीत से जुड़ गए हैं, तो आपको नेचुरली बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अब अपने जीवन को। तो आप क्या रेगुलरली प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं या प्रोग्राम
1: मैं
0: में
1: जाता रहता
0: पार्टिसिपेट?
1: हूँ और मैंने एक ग्रुप और बनाया हुआ है जिसमें वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का ग्रुप है, उसमें
0: अच्छा
1: गाना विद इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे
0: अच्छा
1: अपने अपने लाते हैं, सब अपने अपने जिसके पास गिटार है, पैड है, जो भी है। अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छे तबलिस्ट भी हैं, तो उनके
0: अच्छा
1: साथ भी मैंने गाए हैं, उनके संगत
0: ओके
1: लेकर। और अभी मैं हारमोनियम लोगों को सिखाता भी हूँ, कई
0: अच्छा
1: लोगों को
0: अच्छा
1: सिखाया है जी।
0: अच्छा
1: और बस
0: बहुत
1: हर लोग फीस की पूछते, मैंने बस यही मत पूछा, फीस नहीं है, बस
0: नहीं,
1: आपको पसंद
0: उसे
1: आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई
0: नहीं
1: जितना ज्ञान जो भी है थोड़ा बहुत, वो अगर बांटने में क्या दिक्कत।
0: और संगीत का ज्ञान बांटना तो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है साहब, बहुत बड़ी बात है। चलिए चलिए, तो अंत में कोई संगीत प्रेमियों के लिए कोई आपका खास संदेश क्या कहना चाहेंगे जो
1: मतलब
0: आप सर?
1: संगीत प्रेमियों से सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो मैं कुछ महसूस करता हूँ, कि हमेशा कभी भी मतलब हमेशा आप तो स्टूडेंट बन के रहिए, विद्यार्थी बन के। तो आप जितना

0: कोई इसकी सीमा नहीं है, संगीत की कोई सीमा नहीं है। कोई भी आदमी अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकता, कितने ही बड़े स्टार हो, कितने बड़े अच्छे गायक हो, लेकिन कंप्लीट कोई भी नहीं है। बहुत
1: जी
0: कुछ है सीखने को, अथाह सागर है, तो अथाह सागर है। तो हमेशा विद्यार्थी बन के रहें और अच्छा सीखने की कोशिश करें, ये कहना है ना।
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी विशेष बातचीत अरविंद कुमार जी सक्सेना के साथ। आज की चर्चा से स्पष्ट होता है कि सच्चा जुनून कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तताएं और जिम्मेदारियां क्यों ना हो। यदि मन में कला और संगीत के प्रति प्रेम हो तो वह किसी न किसी रूप में फिर से जीवन में लौट आता है। अरविंद जी, हम आपके उज्जवल संगीत सफर, स्वस्थ सुखद जीवन की कामना करते हैं, और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत
1: तो
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुनते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपका मेजबान आलोक कुमार, आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है विद्यार्थी।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल और डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर देवाशीष अनुजा और बच्चे, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की, दुबली पतली, मृदुभाषी, नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942, बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई। वहां
वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक इन माई हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थीं कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत यह भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थी, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए। परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया, मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता, ये किसी काम का नहीं है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा, ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा। हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे, तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते
तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने दो तीन दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यूट्यूब पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे, उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।
2: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था, कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था, तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं, तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ, तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले, मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे, जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता, पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन 1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं। वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं।

और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। न्यू देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और किताबों के पठन पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आसपास और पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से हमें कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो उन गुणों के लिए आकर्षित हो, प्रभावित हो, उसे पता चले कि ऐसा होता क्यों है। इस अवधि में बाकी सारी पढ़ाइयां, शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र की पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे, तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: एक ऐसे अभिनेता थे जो एक ही बार में आपका सारा ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्म बिरादरी में ग्लैमर को जोड़ा और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अशोक कुमार जी की। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर यात्रा रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुप्पल डिंडीगल डिंडीगल कुप्पल, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम, ओंगोल नर्टिगोल नर्टिगोल ओंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

अशोक कुमार जी ने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और अपने करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति से लाखों दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: कैसे मैंने पूछो ना कैसे मैंने पूछो ना कैसे मैंने दर्द बिताए।
1: दोस्तों अशोक कुमार जी का असली नाम था कुमुदलाल गांगुली, जी हाँ, जो बाद में भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी जी के यहां हुआ था। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, चाहे भूमिका कैसी भी हो, नकारात्मक किरदार हो या हीरो का किरदार, अशोक कुमार जी ने सभी के साथ बड़ी सहजता से न्याय किया। चलिए पहले उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनते हैं, फिर मैं कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

आप हैं आरजे समीर के साथ दोस्तों, और आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की। तो अशोक कुमार जी एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करते थे, है ना मजेदार बात। और वो अक्सर उन बीमारियों का समाधान कर दिया करते थे जिनसे डॉक्टर निपट नहीं पाते थे। आइए इसी बात पे हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की, जिनका असल नाम कुमुदलाल गांगुली था। आपको पता है दोस्तों, वो एक बेहद अच्छे चित्रकार भी थे।

फिल्मों में मौका मिलने से पहले अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट की तरह काम करते थे। फिल्मों से उनका परिचय पूरी तरह से एक संयोग था। उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जीवन नैया, जो कि 1936 में बन रही थी, उसमें मुख्य भूमिका मिली। आइए इसी बात पर उनकी एक और फिल्म का सुरीला सा गीत हो जाए।

अशोक कुमार जी की सबसे पहली बड़ी हिट थी अछूत कन्या। इस फिल्म ने गांधी जी की बिना किसी वर्ग या जाति विभाजन की विचारधारा को प्रसारित किया था। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों अशोक कुमार जी भारतीय सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे, मतलब वो सबसे पहले अभिनेता थे जो हीरो के रोल्स करते करते एक बार विलन का रोल भी कर बैठे और उसमें भी उनकी एक्टिंग शानदार रही। मैं बताता हूं वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का रोल किया। तब तक एक गीत हो जाए।

ज्ञान मुखर्जी जी 1943 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किस्मत। अशोक कुमार जी ने उसमें एक जेब कतरे का रोल निभाया जो कि बाद में प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो टेक्निकली अशोक कुमार जी करोड़ क्लब स्थापित करने वाले पहले अभिनेता थे। तो लीजिए एक और गीत उनकी फिल्म का।

उसके बाद अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में ही निर्माता बन गए। क्या दोस्तों आपको पता है, देव आनंद साहब को पहला ब्रेक जिद्दी फिल्म में 1948 में इन्होंने ही दिया था।

0: छह लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।
1: हिल मिल के चलना यूं ही साथी,
0: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: कहते हैं प्यारे।
1: दोस्तों, अशोक कुमार जी ने 1949 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था महल, और उस फिल्म में उन्होंने एक प्रतिभा को इंट्रोड्यूस किया जिसने 1950 के दशक में बॉलीवुड में तूफान ला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधुबाला।

0: इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ।
1: दोस्तों, अशोक कुमार 1980 के दशक में टेलीविजन स्क्रीन पर भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। क्यों, आपको याद है ना, हम लोगों की वो एंकरिंग जो अशोक कुमार जी काला रंग का चश्मा पहनकर किया करते थे।

1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी फिल्मी हस्ती को दिए जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

के साथ में चलते हो चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो हर बात पे दिल भर जाता है।

0: जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: हम अकेले
1: जाएं साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार पतंग भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

पे चले कटा

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जमाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
1: जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, कितना तो सोचिए मौसम।

0: मस्ती के दिन है यही दिन है, मस्ती के दिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा।
1: ओ, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।

0: आना दिल में समाना जियाना दिल में समाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
1: हा हा छोड़ दो अचल जमाना क्या कहेगा
0: हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, एक खामोशी जो सदियों से जहन में सोई थी, आज सुरों का सहारा मिला तो गुफ्तगू करने लगी। नमस्कार, आदाब और एक बेहद मखमली शाम आप सबको मुबारक हो। 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका अपना चहेता प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दिन भर की मसरूफियात और दुनिया का शोर थमता है तब दिल को किसी सहारे की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे हमारी कश्मकश को समझ सके। ऐसे ही लम्हों में मौसीकी यानी संगीत हमारी तन्हाई का हाथ थाम लेता है। आज की इस महफिल का मिजाज कुछ ऐसा ही मुनफरिद यानी अनोखा सा है, क्योंकि आज हम तरानों के इस कारवां को कुछ ऐसे बासलाहियत और बेमिसाल फनकारों के सुपुर्द करने जा रहे हैं जिनकी गायकी का अंदाज सीधे दिलों में उतर जाता है। गजल का हुस्न अल्फाज की संजीदगी और सुरीले जज्बातों की एक नई दास्तान आज हर पड़ाव पर आपको एक बिल्कुल नया रंग मयसर होगा। तो अपनी तवज्जो को समेट लीजिए और दिल के दरवाजों की सांकलें जरा खोल लीजिए। धीमे से ठंडी बयार का झोंका तो आने दीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की और रुख करते हैं आज की बेहद खास पहली पेशकश की तरफ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता है और बदले में सिर्फ एक खूबसूरत कल की उम्मीद रखता है, मगर अफसोस कि वक्त का हिसाब कुछ ऐसा कड़ा निकलता है कि वो चाहत एक ऐसे इम्तहान में बदल जाती है जहां पुरानी बातों का बदला चुकाना पड़ता है। जरा इस गजल का ये बेहद हसीन मिसरा मुलाहजा फरमाएं जहां मिलन के उन छोटे से लम्हों का जिक्र है जो बड़ी मिन्नत के बाद मयसर होते हैं। मिसरा कुछ यूं है, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। वसल यानी मिलन और मुख्तसर यानी बेहद छोटा सा। शायर कहते हैं कि जिस मुलाकात के लिए हमने महीनों तक दिन गिने, जब वो आई भी तो पल भर में खत्म हो गए। अब ये बेबसी अपनी आखिरी हदों को छूती है तो गजल का ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। बकौल शायर, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें, वो नहीं सुनते हमारी क्या करें। मांगते हैं हम दुआ जिनके लिए, इस खूबसूरत कलाम को जब हमारे जगजीत जी ने अपनी तिलस्मी अंदाज में गाया तो ये हर एक उस दिल की जुबां बन गई जिसने मोहब्बत में अधूरेपन को सहा हो। तो आइए सुनते हैं जगजीत साहब की आवाज में प्रोग्राम की पहली गजल, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए, आपकी नजर।

दोस्तों, वक्त की रफ्तार तो अपने ढर्रे पर चलती रहती है, मगर जब कोई दिल के बेहद करीब रहने वाला शख्स हमसे दूर होता है तो हर लम्हा सदियों जैसा भारी लगने लगता है। ये गमजदा दिल महबूब से कोई शिकवा नहीं करता, बल्कि एक मासूम से गुजारिश करता है कि लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना ये पूरी कायनात और ये जिंदगी अधूरी है। गजल का मिसरा कुछ यूं है, वादा करके ये कौन आया नहीं, वादा करके ये कौन आया नहीं, शहर में आज रोशनी कम है। और फिर आईना देखकर ख्याल आया, आजकल उनकी दोस्ती कम है। शायर के दिल का हाल तो देखिए, कहता है जाने क्या हो गया मौसम को, जाने क्या हो गया मौसम को, धूप ज्यादा है चांदनी कम है। और फिर कहता है तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, तेरे दम से ही मैं मुकम्मल हूँ, बिन तेरे तेरी आमनी कम है। दोस्तों, और इस बेहद नाजुक और जज्बाती कलाम को सुरों से सजाया है बेहद ज़हीन और बासलाहियत गुलुकार चंदन दास साहब ने। चंदन दास जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को निभाते हुए भी लफ्जों के जज्बात सीधे दिलों तक पहुंचा देते हैं। उनकी आवाज का वो धीमापन इस दर्द को और गहरा कर देता है। जरा इस गजल का एक और बेहद संजीदा मिसरा मुलाहजा फरमाएं, जहां तन्हाई की इंतहा बयान की गई है। कहते हैं तुम मिले तो राज हमने जाना, तुम मिले तो ये राज हमने जाना, पारसाओं में एक हम ही कम है। पारसा यानी बहुत पाक और पाकीजगी का दावा करने वाले लोग। शायर कहते हैं दुनिया तो खुद को बहुत पाक साफ बताती है, मगर तुम्हारी मोहब्बत में डूबने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस मतलबी दुनिया के असूलों में बस एक हमारी ही कमी थी। और जब इंतजार अपनी आखिरी हदों को छूता है तो चंदन दास साहब की आवाज में ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। कहते हैं जानता हूँ तुम आओगे जरूर, जानता हूँ तुम आओगे जरूर, फिर भी धड़कन जरा थमी कम है। भले ही दिल को यकीन है कि महबूब लौट आएगा, मगर बिरहा का ये वक्त दिल को एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा। तो फिर आइए सुनते हैं अल्फाज से एहसास तक के इस मरहले पर चंदन दास जी की आवाज में ये सदाबहार गजल। आप ही जाओ कि जिंदगी कम है, तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। शौक फरमाएं।

दोस्तों, जब मोहब्बत में किसी के हुस्न और उसकी सादगी की तारीफ की जाती है तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। तुमसे ज्यादा हंसी कोई नहीं, दिल ही दिल में वो सोचता होगा। इस मिसरे का ख्याल जरा

दोस्तों, जब मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छूती है तो महबूब की दी हुई तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मुकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज़ जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। दोस्तों, जब मोहब्बत अपनी आखिरी हदों को छूती है तो महबूब की दी हुई तकलीफ भी नेमत लगने लगती है। कतील शफाई साहब ने इस ख्याल में वफा के उस ऊंचे मकाम को पेश किया है जहां आशिक जमाने से कोई शिकवा नहीं करता। अता यानी वो चीज़ जो तोहफे में मिली है। शायर कहते हैं, जब ये जख्म और ये हिजर यानी जुदाई देने वाला ही मेरा अपना महबूब है तो भला दुनिया के सामने जाकर इसका रोना क्या रोना। और जब इस बेमिसाल तहरीर को उस्ताद गुलाम अली साहब की रूहानी मौसीकी का साथ मिला तो सुरों को अपनी मखमली बंदिशों में पिरोने के लिए आगे आई हम सब की बहुत अपनी आशा भोंसले जी यानी हमारी आशा ताई। इस पूरे एल्बम में आशा ताई ने क्लासिकी गायकी की नाजुक हरकतों को जिस नज़ाकत और ख़ास सोच के साथ निभाया है वो जहन पर एक अजब सा सुरूर तारी कर देता है। जरा इस गज़ल का ये मिसरा मुलाहिज़ा फरमाइए, जहाँ ज़माने की बंदिशों का जिक्र है। बकौल शायर, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, अक्स बहते हुए पानी में दिखाई ना दिया, आईना टूट गया तो गिला किससे करें। तौबा खुदा, क्या शायरी है। शायर की मुराद इस मिसरे से यूं है कि जब वक्त के थपेड़ों ने वजूद के उस आईने को ही बिखेर दिया जिसमें कभी महबूब का अक्स दिखता था तो अब इस टूटे हुए दिल का शिकवा किससे किया जाए। और इस कश्मकश का अगला सिरा जरा इस मिसरे में महसूस कीजिए। शायर कहता है, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, हमको अपना ही मुकद्दर ना मयसर आ सका, तू अगर हमसे छुटा है तो गिला किससे करें। यानी जब अपनी ही किस्मत का लिखा हमारे हक में नहीं था तो तुम्हारी बेरुखी पर नाराज होने का तो कोई हक ही नहीं बनता। तो आइए सुनते हैं इस पुरअसरार से मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ आशा ताई की इस लाजवाब पेशकश को। दर्द जब तेरी अता हो गिला किससे करें। शौक फरमाएं।

दोस्तों, उर्दू अदब के चमकते सितारे खुमार बाराबंकी साहब ने इस कलाम में वक्त और मोहब्बत के उस जादुई एहसास को पिरोया है जहाँ दिल का सिर्फ एक खूबसूरत लम्हा भी सदियों के जीने का हौसला दे जाता है। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। वो कहते हैं, दुनिया भले ही लंबी उम्र की हसरत रखती हो, मगर जो लोग सिर्फ शिद्दत से जीना जानते हैं, उनके लिए दो दिन का ये छोटा सा सफर भी पूरी कायनात के हुस्न को समेट लेता है। दोस्तों, जब इस नफीस कलाम को सुनने की बात आती है तो एक बहुत ही दिलचस्प नाम हमारे सामने उभरता है, हंसराज हंस जी का। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आम तौर पर लोग उन्हें उनके बुलंद और ठेठ पंजाबी लोकगीतों के लिए जानते हैं, लेकिन कड़े शास्त्रीय संगीत की तालीम और सूफियाना रूहानियत उनके वजूद में बचपन से घुली हुई है। जब हंसराज साहब पंजाबी के ऊंचे सुरों से निकलकर उर्दू गजल के ठहरे हुए मखमली अंदाज में आते हैं तो उनकी बुलंद आवाज खुमार साहब के एक नई रूहानी ऊंचाई अता कर देती है। फिर शायर कहता है, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों के बाद हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। रफ्ता रफ्ता यानी हौले हौले, धीरे धीरे। शायर कहते हैं कि किसी अजीज इंसान को भुलावे की कोशिश में हमें एक लंबा जमाना लग गया, और रोज थोड़ा थोड़ा करके उसकी यादों में मरना मानो किस्तों में अपनी ही जान देने जैसा है। और जब दिल की आंखें अपनी वफा बयां करती हैं तो वो कहते हैं, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, वो जान ही गए हैं कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबरी का मजा हमसे पूछिए। तो आइए, अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और शानदार मरहले पर पूरी ईमानदारी से, पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं खालिस पंजाब की मिट्टी से सूफियाना कलाम, हमारे पंजाबी हंसराज हंस की सौंधी सौंधी सुरों से भरी रूहानी आवाज में। उनके बहुत से कलाम सुनने के बाद मुझे आज की शाम के लिए ये मोतबर यानी बहुत एप्रोप्रिएट लगा। तो सुनिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। आपकी नजर प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश।

दोस्तों, सुरों, साजों और अनोखे एहसासों की जिस सरजमी पर आज हम सब सफ़र कर रहे थे, अब वहाँ विदाई की शफक यानी शाम की लाली उतर आई है। जगजीत सिंह साहब की यादों के गलियारों से शुरू हुआ अल्फाज का ये कारवां, चंदन दास साहब की पुरकशिश गुजारिश, विनोद राठौड़ जी का हसीन तसव्वुर, आशा ताई की मखमली शिकवों और आखिर में हंस साहब की रूहानी पेशकश तक आते आते एक मुकम्मल इनायत बन गया। शायरी की खासियत ही यही है कि ये हवाओं में घुलकर हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। जब रेडियो पर धुनों का ये सिलसिला थम जाएगा, तब भी इन फनकारों की आवाज़ें आपके जहन की खामोशी में कहीं ना कहीं गूंजती रहेंगी। किसी शायर ने इस सुरीले असर को क्या खूब लफ्ज दिए हैं। वो कहता है, बुझ गए दिए तो क्या, एक रोशनी तो रह गई, महफिलें रुखसत हुई, पर दिल में कशिश तो रह गई। इसी दिलकश कशिश को अपने अंदर समेटे हुए अब वक्त हो चला है इस महफिल को समेटने का और आपसे रुखसत होने का। आप मुझे यानी आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती को इस मोड़ पर दीजिए इजाज़त, मगर सुरों का ये साथ यूं ही बना रहेगा। अपनी सेहत का और अपने अपनों का और अपने जज्बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी चाहने वालों को मेरी तरफ से एक बेहद हसीन शब खैर, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से काफी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इस रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के एप्लीकेशन को भी अपने फोन में डाउनलोड किया है। साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के माध्यम से ले रहे हैं। कृषि संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम, खेती बाड़ी प्रोग्राम, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी हमारे स्टूडियो में आते रहे हैं, हम भी आपके खेतों खलिहानों पर आते रहे हैं, आपसे रूबरू होते रहे हैं और आपसे जो खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुँचाते रहे हैं। साथ ही आपकी खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को भी हमने जाना है और उसके निदान हेतु हमने काफी किसान भाइयों की जो भी समस्या रही है, हमने कोशिश की है कि इसे केवीके के माध्यम से

0: हम इसमें सुधार ला सके और केवीकी के माध्यम से उनमें आने वाली नई नई योजनाओं के बारे में भी हम उसे उन तक पहुंचा सके, आदि प्रयासों में हम लगे हुए हैं। और किसान भाई हमसे जुड़े रहिए, हम केवीकी से जुड़ी हुई और अन्य योजनाओं के बारे में आप तक उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। साथ ही आपकी समस्याएं जो कि आप हमें फोन के माध्यम से या हमारे 1-to-1 के माध्यम से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसे जारी रखिए। हम हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर अमल करते हैं और आपको उन समस्याओं से उभारने के लिए निरंतर प्रयासों में लगे हुए हैं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के अपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस खेती को लेकर हम आज चर्चा करने वाले वो है टमाटर की खेती। साथ ही हम जानेंगे गन्ने की खेती, इससे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी। कुछ किसान साथी जो हमारे स्टूडियो में आके गए हैं, उन्होंने कुछ किसानों ने गन्ना किया हुआ है, साथ ही कुछ किसान जो टमाटर करने के लिए काफी उत्सुक थे उन्होंने भी अपनी राय हमसे रखी थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गन्ने और टमाटर की खेती को लेकर। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कब लगानी चाहिए, क्या देखरेख करनी चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कहाँ से हमें उनका बीज लेना चाहिए और उनका देखरेख, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए, जानेंगे सारी जानकारियों को विस्तार से।
2: किसान भाइयों बहनों, आलू के बाद टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि हमारे देश में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। हमारे देश में इसकी खेती साल भर की जा सकती है। देश के कई हिस्सों में टमाटर को उगाया जाता है और अगर आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन तो मिलता ही है, बाजार में इसका मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं, कई तरह के विटामिन से भरपूर है टमाटर, और कितनी ही ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनको रोकने में भी टमाटर का सेवन करने से मददगार साबित होती हैं। तो आइए आज आपको टमाटर की खेती के संबंध में दे कुछ खास जानकारियां।
3: टमाटर नाजुक सब्जी है, ज्यादा सर्दी गर्मी या जल जमाव को ये सहन नहीं कर पाती। इसकी खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, फिर भी बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6-7 होना चाहिए। सामान्य किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 400-450 ग्राम, जबकि संकर किस्मों के लिए 175-200 ग्राम बीजों की जरूरत होगी। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, काशी अमृत और काशी अनुपम कुछ उन्नत सामान्य किस्में हैं। संकर किस्मों में स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, वैभव, स्वर्ण संपदा, काशी हाइब्रिड 1 और काशी हाइब्रिड 2 बेहतर हैं। नर्सरी में बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें और बुआई के बाद बीज के ऊपर कंपोस्ट की पतली परत बिछा दें। 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब इसके खेत में रुपाई की जाएगी। रुपाई से पहले खेत की 2-3 बार अच्छी तरह जुताई करें और उसमें 7-10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद मिला दें। अगर आप सामान्य किस्म बो रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। सीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। वहीं असीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सामान्य अपनी किस्मों में प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल गोबर की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश की जरूरत होगी। संकर किस्मों के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद, 200 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटाश चाहिए। रुपाई के समय एक तिहाई नाइट्रोजन ही देना है, बाकी एक तिहाई 25 दिन बाद और बाकी एक तिहाई 40 से 45 दिन बाद दे दें। रुपाई के 20 से 25 दिन बाद पौधों को बांस का सहारा दें, इससे पौधे गिरेंगे नहीं और फसल भी बेहतर होगी। गर्मियों में हर 7 दिन बाद, जबकि सर्दियों में 10 दिन बाद पानी दें। टमाटर की पौधशाला में आद्र गलन बीमारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें अंकुरित बीज या तो जमीन की सतह से बाहर निकलने से पहले गल जाते हैं या अंकुरण के 15 से 20 दिनों के भीतर। बचाव के लिए पौधशाला में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वहीं जीवाणु मूर्छा रोग फूल और फल पर हमला करता है और उन्हें मुरझाकर सुखा देता है। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएंगे और जल निकासी का इंतजाम रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अगेती झुलसा फफूंदी जनित बीमारी है। इसमें गोल छल्ले नुमा धब्बे बनते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं, इससे पत्ता सूख जाता है। पछेती झुलसा में पत्तियां और तने पर धब्बे बनते हैं। बूंदा बांदी और कोहरा होने पर ये तेजी से फैलता है और पूरा पौधा काला होकर झुलस जाता है। बीजोपचार करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। फल छेदक कीट के लिए रुपाई के दौरान ही फ्यूराडॉन का इस्तेमाल करें, जबकि प्रकोप होने परर नीम से बने कीटनाशी का छिड़काव करें। इसके अलावा रुपाई से 10 दिन पहले खेत के चारों तरफ गेंदे के पौधे लगाएं या टमाटर की 8 से 10 कतारों के बीच एक कतार गेंदे के फूल की लगा दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने हमारे देश की मिट्टी को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है, इसलिए अब मिट्टी की सेहत में सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान उत्तराबाई से, जो कि कई वर्षों से कर रही हैं जैविक खेती और किस तरह से लाभ हासिल कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी।
5: इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तप कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गांव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है तो कभी गाय बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गई, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी

0: यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है। जैविक कृषि में उत्तराबाई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर गांव के अन्य किसान भी जैविक पद्धति से खेती कर लाभान्वित होने लगे हैं।
1: तो आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
3: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: किसान साथियों, हमारे हित के लिए भारत सरकार हमेशा कुछ न कुछ नई योजनाएं लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी भी वजह से, अधिक बारिश की वजह से या सूखे की वजह से या कुछ भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर हमारी फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारी भारत सरकार करती है। तो इसीलिए इस योजना को फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, फसल बीमा योजना के क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है।

0: इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं, साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
1: किसान साथियों, अभी आपने फार्मिंग इंडिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, जाना, समझा। और आइए आगे चर्चा करेंगे हम प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ हैं आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वेद और पुराणों का काफी बेहतर असर पड़ता है। इसलिए अथर्ववेद में ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। लेकिन आज के समय में धरती की बिगड़ती सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई विकल्प उभर कर सामने आने लगे हैं और उनमें से एक है प्राकृतिक खेती।
4: आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती है कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उछली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में, कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसल फलदार बहुवर्षीय पौधे होंगे, कुछ एक वर्षीय होंगे, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज होंगे, तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से प्यारे से भीली गीत का। कहीं भी मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज़।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को, लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
2: हमारे देश में फसल उत्पादकता कई विकसित देशों के मुकाबले कम है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नई तकनीकों से दूरी। लेकिन हमारे आज के कई ऐसे किसान हैं जो नई तकनीकों को अपनाने लगे हैं। ऐसे ही एक किसान है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी। जी हाँ, चौंकिए मत, हमारे आज के ये सफल किसान पहले प्रोफेसर हुआ करते थे। तो आइए मिलते हैं इनसे।
3: कम उत्पादकता यानी कम कमाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहा था। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन ना पैदावार अच्छी हो पा रही थी और ना ही आमदनी। उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए। यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया। इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया। इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है। चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। गन्ने की खेती दूसरे क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे। उस समय एक हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था। चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था। ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी। इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर AD पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया। इस मुलाकात का असर हुआ। डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी। वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहाँ की मिट्टी की जाँच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे। सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया। हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया। फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया। इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया। 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई। इससे 20% तक नाइट्रोजन की बचत होने लगी। इतना ही नहीं, पानी की बचत के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया गया। मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का सहारा लिया और एकल कली सेट का उपयोग किया। इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई। बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे। नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे भी हासिल कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है।
0: किसान साथियों, अभी हमने गन्ने की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने जाना कि गन्ने के जो अवशेष है उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हमें सही प्रयोग किस तरीके कैसे करना चाहिए, इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आइए जानते हैं अगस्त महीने में, आने वाले मंथ अगस्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे बागवानी में। तो आइए डालते हैं एक नजर।
3: लीची में गुटी लगाने का ये उपयुक्त समय है। अंगूर की नई फूटी हुई शाखाओं को 1 मीटर लंबाई के बाद काट दें। फसल में पत्ते खाने वाली सुंडियों का नियंत्रण भी आवश्यक है। नए बागों में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार निकालकर थालों को साफ रखें। पौधों के मूल वृंत में यदि फुटाव आ रहा है तो उसे निकाल दें। पपीते के पौधों की रुपाई इस समय समाप्त कर लेनी चाहिए। अमरूद की फसल को फल मक्खी से बचाने के लिए 0.1% मेलाथियन का छिड़काव करें। दवाई प्रयोग के 15 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करें।
2: हमारे देश में दलहनी फसलों का अहम स्थान है। दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है और सबसे ज्यादा खपत भी यही होती है। दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का तो ये प्रमुख स्रोत माना जाता है। बात जहां तक दलहनी फसलों की खेती की आती है तो किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूंग और उड़द की। आइए देखते हैं मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
3: दलहनी फसलों में मूंग एवं उड़द की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूंग की फसल को खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। उड़द को मुख्य रूप से खरीफ में उगाया जाता है। अधिक उपज के लिए मूंग एवं उड़द की बुआई कतार में करनी चाहिए। मूंग और उड़द फसल की खेती और उचित देखभाल कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मूंग और उड़द फसल की देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। खासकर मूंग और उड़द में सिंचाई पुष्प अवस्था में थोड़ा पहले कर दें। साथ ही फसल में फली बनने की अवस्था में भी सिंचाई कर सकते हैं। समय समय पर पोषक तत्वों की देखभाल करें। दलहनी फसल मूंग और उड़द में कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये फसलें अपने वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाई फसल में पोषक तत्वों की कमी लगने पर यूरिया का इस्तेमाल करें। मूंग और उड़द की फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। हाथों से ही फसलों में निराई गुड़ाई करें। अगर बात करें कीटों की तो बरसात के समय दलहनी फसलों में पीला मोज़ेक वायरस का खतरा रहता है। फली बनने की अवस्था में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये सफेद मक्खी नामक कीट द्वारा फैलता है। ऐसे में इमीडा क्लोप्रिट के इस्तेमाल से इसको फैलाने वाले कीट को मार सकते हैं।

0: इसके अलावा अभी के समय देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी खेतों में लगे मूंग और उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अधिक वर्षा वाले इलाकों में जल निकासी का उचित व्यवस्था करें ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांट्याभील 90.8 FM झाबवा की आवाज़, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए नजर डालते हैं एक सफल किसान की कहानी के ऊपर। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती का एक जीता जागता उदाहरण हमें दिया है।
2: सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक एवं कृषि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है और ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि करने के लिए न ही किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और न ही बाजार से अन्य औषधियां खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने भारत में इस विषय पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वो सतपुड़ा आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ काम करते थे। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में वो अपने पिता के साथ कृषि करने लगे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन कॉलेज में रासायनिक कृषि सीखने के बाद इन्होंने भी रासायनिक कृषि करना शुरू किया। वर्ष 1986 से 88 के दौरान सुभाष पालेकर ने जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि जंगलों में एक स्वविकसित, स्वपोषित और पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था

और फिर 10 हफ्तों के बाद 10-10 किलो नाइट्रोजन और डालें। पौध तैयार होने पर इसकी रोपाई करेंगे। शाम के समय रोपाई बेहतर मानी जाती है। 10 दिन बाद खरपतवार निकाल दें। उसके बाद भी बीच बीच में खरपतवार निकालते रहेंगे। थाई मिर्च की जड़ें संवेदनशील होती हैं। जल भराव होने पर ये गल जाती हैं और इनमें फफूंद लग जाती है। हर 5 दिन में सिंचाई करनी है। सर्दियों में हफ्ते में एक बार सिंचाई करनी होगी। जड़ों के आसपास निराई गुड़ाई भी करते रहें। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। 2 महीने होने पर गुड़ाई के बाद 10 किलो नाइट्रोजन को जड़ों के आसपास डाल दें। ऐसा करने से पोषण बना रहेगा। रोपाई के 60 दिन बाद आपका खेत कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मिर्चों में लगने वाले कीट थाई मिर्च में भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड या फल छेदक। इन कीटों से बचाव के लिए केचुए की खाद का पानी छिड़के, जो जैविक खाद बनाते समय धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। शुरुआत में ही जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीटों की समस्या नहीं आएगी। आज फसल रोपे हुए 90 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा खेत लाल हो गया है। अब इन्हें तोड़कर बाजार में ले जाया जाएगा। 1 एकड़ में 6000 किलो थाई मिर्च मिल जाती है। जैविक तरीके से उगाई गई मिर्च तुड़ाई के 8 दिन बाद तक भी ताज़ा रहती है। सीधे मॉल या होटल में बेचने वाले किसान इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके ले जाते हैं।

0: किसान साथियों, अभी आपने थाई मिर्ची की खेती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कुछ और मिर्ची की किस्मों को और उनकी खेती के प्रकारों को।
2: आज हम लोग खरीफ के समय मिर्च की खेती पर कुछ बातें बताएंगे। एक अच्छी मिर्च की फसल लेने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पूर्ण ध्यान देना होगा कि आपके पौधे जो हैं रुपाई से पहले पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। उसके लिए हम लोग खरीफ के समय ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर नेट हाउस की अगर आपके पास फैसिलिटी है या मच्छरदानी भी जो आपको कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर में पौधों का या बीज का रुपाई करें। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेड बनाते हैं जो लगभग ज़मीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। बेड बनाते समय ये ध्यान रखिए उसमें अच्छे से गोबर की खाद मिली हुई रहनी चाहिए, और क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा तो उसमें जो है पौधों में बीमारी आती है वह कहलाई जाती है पदवी गलन, तो वो एक फफूंद से होती है। उसके लिए गोबर की खाद जब आप मिट्टी में मिलाते हैं उसके साथ साथ फंजीसाइड भी मिला सकते हैं जैसे बैवेस्टीन या कैप्टॉफ। गोबर की खाद में उसको मिला करके फिर आप बेड की तैयारी कीजिए। बेड जब आपका लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जब आपका तैयार हो गया है तब ऊपर की जितने भी पत्थर वगैरह हैं छोटे छोटे उसको हटा करके एक समतल और महीन मिट्टी तैयार करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो है उसमें बीज की रोपाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बीज की रोपाई के लिए लगभग हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि बीज की गहराई जो है 1 या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो बेड तैयार किए हैं उसमें उंगली से ही सीधी सीधी धारियां बनाते हैं और उसमें हम लोग बीज जो है बोते हैं। एक बार जब बीज की बुआई हो गई है उसके बाद हम लोग उसको हल्की सी मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर घास रख करके फिर पानी डाल देते हैं। मौसम में तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहता है तो आपके सारे पौधे जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जम जाते हैं। जब एक बार पौधे जब जम जाते हैं तो आपको सारी घास जो उसके ऊपर डाली गई थी वो हटा देनी चाहिए। हर दिन सुबह और शाम उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे 1 हफ्ते से के करीब होने लगे तब उसमें जो है होइंग करनी पड़ती है, मतलब उंगली से ही जितने भी हैं छोटे छोटे वीड्स जो आने लगते हैं उसको हटाना पड़ता है। इसको जो बहुत कॉमनली आप लोग खरपतवार बोलते हैं वो करनी पड़ती है, और पौधों की तैयारी में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो उसकी रुपाई से पहले 40 से 45 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर इस बीच आपको ये लगता है कि ये पत्ती संकुचन की प्रॉब्लम आपको दिख रही है तब आप जो है उसमें नीम की जो तेल होती है वो नीम बांध की दवाई में उपलब्ध है बाज़ारों में वो आप ले सकते हैं, और सीडलिंग में 1 लीटर में 2 ml मिला करके उससे आप जो है हर हफ्ते पौधों पर स्प्रेइंग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी ये जो बीमारी होती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलती है तो सफ़ेद मक्खी नहीं आ पाती है। 40 से 45 दिन में जब आपके पौधे तैयार हो गए हैं तब आप इसको खेतों में रुपाई के लिए तैयार कर सकते हैं। तो खेतों की तैयारी के लिए आपको जो है इसमें खरीफ के मौसम में बेड सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें जो है आप बेड बनाने रिज एंड फरो टाइप का बेड बनाना होता है ताकि बरसात के मौसम में जब बरसात अगर ज़्यादा हो रही हो तो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है पौधों की रोपाई जो है बेड पर करते हैं। पौधों की दूरी जो है लगभग 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर आप 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 100 ग्राम के बीज चाहिए होते हैं। 100 ग्राम के बीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और 1 एकड़ में लगभग 4,500 के करीब पौधे आ जाते हैं अगर आपके पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी है और रो टू रो की स्पेसिंग अगर 60 सेंटीमीटर है। तो एक बार जब आपकी रुपाई हो जाती है, रुपाई ज्यादातर ये ध्यान दें कि दोपहर के समय करें, दो बजे के बाद, या मतलब कि जब शाम के समय। इससे क्या होता है कि सुबह की जो तीव्र धूप होती है उससे पौधे कई बार सूख करके मर जाते हैं। तो अगर आप दोपहर के समय कर रहे हैं या शाम के समय कर रहे हैं तो रात भर की जो ठंडक होती है उसमें पौधे खड़े हो जाते हैं और आपका जो क्रॉप स्टैंड होगा या पौधों की जो मृत्यु दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक बार पौधे जब आपके लग गए और 20 से 25 दिन के हो गए हैं रुपाई के बाद, तब आप अपना सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोजन दे सकते हैं, जिसमें यूरिया बहुत कॉमनली यूज होता है। तो एक 25 दिन पर आप यूरिया का डोज दीजिए, उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद फिर 40 दिन पर दीजिए। लगभग 40 दिन में पौधे पूरे पूर्ण तरह से उग जाते हैं और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब फूल आना शुरू हो गया तब जो है उसमें यूरिया एकदम मत दीजिएगा, उससे फल बनाने की क्षमता जो पौधों की बहुत कम हो जाती है। ये जो पत्ते मुड़ने की बीमारी है या मरोड़िया बीमारी है, ये ज़्यादातर जब पौधे उगते हैं उस समय ज़्यादा आती है। तो इससे बचने के लिए आप जो है विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बाज़ार में बहुत उपलब्ध है वो है रोगर। रोगर जो है वो एक तरल दवाई है जिसको आप 2 ml पर लीटर डाल करके आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीम बाण भी मिला सकते हैं। नीम बाण का जो मात्रा होनी चाहिए वो 5 ml पर प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना, मिर्ची में पत्ते कोड़ाने की जो समस्या है वो हमेशा से बनी रही है। इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगर नामक जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप नीम बाण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए करते हैं चर्चा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर।
2: दूसरी दवाइयां जो हैं वो है एक अप्लॉड नाम की दवाई आती है बाजार में, वो 1.5 ml पर प्रति लीटर आपको डालना होगा। उसमें भी 5 ml नीम बाण मिला सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक बार जो दवाई इस हफ्ते अगर इस्तेमाल कर दिए हैं तो दूसरे हफ्ते आपको दूसरी ही दवाई इस्तेमाल करनी है। एक ही दवाई लगातार आप इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि सफेद मक्खी जिससे ये बीमारी फैलती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दवाई कारगर नहीं रहती है। तो हर हफ्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दवाई बदल करके स्प्रेइंग करें। और दूसरा तरीका जो आप सफेद मक्खियों से बच सकते हैं, अगर आप खरीफ के समय ले रहे हैं तो अपने खेतों के चारों ओर मक्के की 2 से 3 क्यारियां लगा दें। ऐसा पौधा है जिससे सफेद मक्खियां उसके पास नहीं आती हैं, तो इससे भी आपके मिर्च की खेती बच सकती है। मिर्च में पत्ती संकुरण की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, जब फल आने लगे तब आप अगर हरी मिर्च के लिए आप अपनी खेती कर रहे हैं तो एक बार जब पूरा पौधा आपका मिर्च से भर जाए तो उस समय आप जो है फल तोड़ लें। तो फल तोड़ने से ये फायदा रहता है कि फिर से नए फूल आते हैं और पौधों को और फल बनाने की क्षमता हो जाती है। इस तरह का काम एक फसल में 3 से 4 बार आप फल तोड़ सकते हैं और आप पौधों का उपज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च के लिए खेती करना चाहते हैं तो एक बार जो फल तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, तो जब तक लाल नहीं हो रहे हैं फल, उनको तोड़िए मत। एक बार जब फल लाल हो जाते हैं तब आप लाल फल को तोड़ करके उसको हल्की धूप होती है उसमें सूखने के लिए डाल दीजिए, और धूप में जब वो सूख जाए तब आप उनको आराम से रख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें नमी बनी हुई है फलों में तब उसको अंदर मत रखिएगा, इससे फलों में सड़न होने लगेगी। तो ये अगर आप अपनाते हैं किसान भाइयों, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मिर्च की फसल ले सकते हैं।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, हमने बहुत से डॉक्टरों के बारे में सुना है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि पेड़ों के लिए भी डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक सफल किसान से जो कि अपने गांव में ही पेड़ों के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। किसान साथियों, जानेंगे उनकी कहानी। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं एक सफल किसान की कहानी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने मनुष्यों के डॉक्टर सुने थे, हमने अपने नाक कान आंखों के डॉक्टर सुने थे, हड्डियों के डॉक्टर सुने थे, लेकिन आज हम सुनने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर के बारे में। आज जी हाँ, हम जानने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं।
2: उनके गांव जहां पाड़ा में पेड़ों का डॉक्टर कहा जाता है। जी हाँ, कृषि क्षेत्र में तो इन्होंने एक साधारण से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये आविष्कारक किसान बन चुके हैं। तो कैसा रहा इनका ये सफर और किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की, आइए देखते हैं।
3: चक्रधर प्रधान बरगढ़ जिला ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान है। बचपन में पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूट जाने के बाद वे अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और वे खेती के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे। वर्ष 1985 में चक्रधर के खेत में अच्छी पैदावार हुई तो उन्हें खेती में आगे बढ़ने का हौसला मिला। इसके बाद चक्रधर ने नींबू की खेती करनी शुरू की। इन्होंने अपने खेत में नींबू के लगभग 50 पेड़ लगाए। शुरुआत में चक्रधर ने 8,050 रुपए की लागत से इस काम को शुरू किया और 8,500 रुपए कमाए। 50-50 पेड़ हर साल लगाने वाले चक्रधर प्रधान ने 3 साल में ये महसूस किया कि हर साल इनका एक पेड़ मर जाता है या खराब हो जाता है। मरने और खराब होने वाली पेड़ों की संख्या हर साल बढ़ रही थी। ये बात चक्रधर को काफी परेशान कर रही थी। पेड़ों की मृत्यु से उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा। वे अपने पेड़ों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वे इनकी तकलीफों को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। पेड़ों के मरने से वे काफी चिंतित थे। वे समस्या का समाधान खोज रहे थे। अपने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक वैज्ञानिक से बातचीत की। वैज्ञानिक ने पेड़ों को देखने के बाद कहा कि इन पेड़ों की जगह वे दूसरे पेड़ लगा लें, ये तो खराब हो गए हैं। इस बात ने चक्रधर प्रधान को बहुत परेशान किया। तब इनके मन में ये प्रश्न उठा कि डॉक्टर आला लगा कर मरीज का इलाज करते हैं, क्या पेड़ों का भी आला से इलाज हो सकता है? इस जिज्ञासा ने चक्रधर प्रधान की बेचैनी बढ़ा दी। इन्होंने डॉक्टर से एक आला लेकर अधमरे पेड़ पर 20 मिनट तक कान लगाकर सुना और उस पेड़ से उन्हें कुछ आवाज मिली। आवाज को पहचानकर चक्रधर ने अनुमान लगाया कि जरूर ये कीड़ा है। इन कीड़ों के कारण ही इनके पेड़ सूख कर मर जाते हैं। इनके आला लगाकर पेड़ों को सुनता देख गांव के लोग अजीब समझ रहे थे, लेकिन चक्रधर को किसी की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। वो तो बस अपने पेड़ों को बचाने में लग गए। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई कर पाया कि कीड़े पेड़ की जड़ों को खा रहे हैं। वे अपने पेड़ों में लगने वाले कीड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। इस काम में सफलता मिलने पर लोगों को भी विश्वास हो गया कि वे सच में पेड़ों के दुख दर्द को समझते हैं। चक्रधर प्रधान अपने गांव में पेड़ों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इनके गांव और आसपास के किसान अपने पेड़ों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कराने इनके पास आते हैं। इनकी मदद से किसान भी अपने पेड़ों की समस्या को सुलझा कर अपने पेड़ों को सुरक्षित करते हैं। चक्रधर प्रधान अपने इस ज्ञान को किसानों के साथ साझा करते हैं। आज वे अपनी ही नहीं दूसरों के पेड़ों की भी रक्षा करते हैं। इनके गुणों और खेती में दिए इनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस काम के लिए मान और सम्मान के साथ एक पहचान भी मिली है।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं पालक की खेती को लेकर। इसकी खेती हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सा बीज लाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
2: आज की वार्ता में मैं आपको अगेती पालक की बुआई कैसे करें, उसी खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। आप देखें, पालक की जहां बात आती है, वैसे अमूमन तौर पे नॉर्मल किसान ये इसको सितंबर से अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक बुआई करता है और उस समय इसकी खेती ज़्यादातर करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बाज़ार में इसकी बहुतायत मांग होती है और पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ पालक की ही खेती कर कर के अपनी आमदनी में वृद्धि करते हैं। तो जहां तक संभव हो सके, हमारे किसान भाई, इस समय बाज़ार में पत्तेदार सब्जियों की मांग ज़्यादा होती है और यदि आप पालक की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप देखें, पालक ऐसी सब्जी है जो कि पोषण से भरपूर है। आप इसमें अधिक से अधिक विटामिन, खनिज लवण, आयरन तथा कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक रेशा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पालक की सब्जियां अपने भोजन में समावेश करके अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती आमतौर से ओपन खेत में करते हैं, फील्ड में करते हैं, और अगर किसान भाई के पास अपनी ज़मीन हो तो उसमें भी छोटे खेती में कर सकते हैं। अगर उनके पास घर के पीछे पिछवाड़े में, अगर बैकयार्ड में जगह है, वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर फिर भी छत है आपके पास तो उस पर भी आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं उसको कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई आर्थिक दृष्टि से खेती करना चाहते हैं तो वो हमारे जो ओपन खेत हैं, फील्ड हैं, खुले खेत में एक एक हेक्टेयर की खेती, जहाँ पे एक एक एकड़ की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उसमें खेती कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप खेती की तैयारी अच्छे से करें। खेती की तैयारी में अगर आप देखें, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनमें अगर खेती में जीवांश अधिक होगा तो पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से आप अधिक उत्पादन भी ले सकेंगे। तो ये जहाँ तक बात हम देखने की है कि आप 25 टन सड़े गोबर की खाद अगर मिल जाए तो आप अपने खेत में एक हेक्टर के हिसाब से मिलाएं, और नहीं तो आप फार्म यार्ड कंपोस्ट हो उसको भी मिला सकते हैं। अगर संभव हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेत में मिला के डाल सकते हैं, तो जिससे कि ये भूमि जो है उर्वरा शक्ति इसकी बढ़े और उसमें जब आप बिजाई करेंगे तो पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके साथ ही जब आप खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं, उसमें ये आप जो सड़ी खाद है कंपोस्ट की मिला लेते हैं, मिलाने के बाद एक दो हल से अच्छी से जुताई करें और बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाए, पानी लगा करके बिल्कुल जब उसमें ओट आ जाए तब आप उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप देखेंगे तब ये बिजाई के लायक इसको आपको तैयार करनी है। जैसा बारिश का मौसम है इस समय, तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर उन्हें रेस्ड बेड पे खेती करनी है, जैसे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनानी है, तो आप उसके लिए एक मीटर चौड़ी क्यारियां बना सकते हैं या 80 से लेके एक मीटर चौड़ी क्यारियां टमाटर के लिए भी जैसे बनाते हैं, इस तरह से ऊंची उठी हुई एक फुट लगभग ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं और बीच में दो क्यारियों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की जगह छोड़ें, जिससे कि आने जाने में और उसमें पानी देने में लगाने में आपको असुविधा ना हो। तो इस तरीके से आप रेस्ट बेड पर खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे ऐसा भी देखा गया है कि वो बिल्कुल फ्लैट बेड में भी खेती करते हैं, बिना मेड़ बनाए हुए उस पर भी खेती कर लेते हैं। तो वो करते हैं, उनकी अगर ज़मीन में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध है तो वो आप फ्लैट बेड में भी खेती कर सकते हैं। इसको अब खेती करने के लिए मैं आपको पहले उन्नत किस्मों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप देखें, पालक की बहुत अच्छी किस्में, बहुत हमारे स्थानीय किस्में भी हैं, किसानों के बीच में प्रचलित हैं, वो अपनी उगाते हैं। लेकिन कुछ अच्छी किस्में हैं जो हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। इसमें पूसा हरित एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत उगाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा दूसरी एक और किस्म है पूसा भारती, ये बहुत ही उत्तम किस्म है। अगर आप देखेंगे इसकी पत्तियों में तो इसमें रेशा तो होता है, लेकिन अगर आप जैसे पत्ती को मोड़ें तो पत्तियां बिल्कुल आसानी से मुड़ जाती हैं और कड़क करके टूटती हैं। तो इसकी एक खास पहचान है। अगर आप इसको आप खेती करते हैं तो इस जो अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका बाजार भाव ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑल ग्रीन किस्म है जो कि बहुतायत है, प्रचलित है किस्म किसानों के बीच में। ये भी एक किस्म है, पूसा से भी निकाली गई है, इसकी भी खेती कर सकते हैं आप। तो ये जो कुछ उन्नत किस्में हैं पालक की, आप इसके बीज उपलब्धता अपने लिए सुनिश्चित कर लें, जहाँ से भी आपको संभव हो, भारत अनुसंधान संस्थानों से या देश के बीज विक्रेता जहाँ से आप करते हैं वहाँ से प्राप्त कर लें। आप इसको ले करके अपने पास सुनिश्चित कर लें, क्योंकि बुआई का समय है, बुआई कर सकते हैं आप। वैसे तो आमतौर पे जो हमारे बहुत ही वैसे किसान हैं वो लगभग साल भर इसकी खेती हर मंथ में बुआई कर करके इसको बाजार में बेच करके इसका पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जब एक हेक्टेयर में आप खेती करना चाहते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो इस बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम थोड़ी सी बीज की मात्रा अधिक लगती है। और यही अगर आप जाड़ों के मौसम में करेंगे तो 25 से 30 किलो बीज काफ़ी पर्याप्त होता है। अब जहाँ तक बात है इसमें नत्रजन देने की, देखिए ये पत्तीदार सब्जियाँ हैं, इसमें आपको नत्रजन की मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपने अच्छी सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला रखी है, चाहे आप कंटेनर में कर रहे हों, गमलों में कर रहे हों, तो उसमें अच्छे से इसका जमाव होगा। अगर जहाँ हम खुले खेतों की बात करते हैं तो उसमें हम 75 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा संस्तुत करते हैं इसकी खेती के लिए। जहाँ तक आप अंतिम जुताई के समय में ये आप ध्यान रखें कि 25 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटाश की मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय मिला करके अच्छे से खेत की जुताई कर दें और बिल्कुल पानी लगा करके उसे बुआई के लिए तैयार रखें। जब आप इस तरीके से करें और जो बाकी 50 किलो मात्रा बचती है नत्रजन की, तो इसको आप 30 दिन पे और 45 दिन पे इसका छिड़काव करते हैं, या यूं कह लें कि जब पहली

कटाई कर लेते हैं या दूसरी कटाई के समय में 25-25 किलो की मात्रा का छिड़काव करके आप अपने पौधों को देने के लिए ध्यान रखें। तो अब आप बीज की बुझाई कैसे करें, जब आप देखें इसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे नाली निकालें, लाइन की कतार की कतार बनाएं। अगर आप मेड़ों पे बो रहे हैं, 1 मीटर चौड़ी मेड़ है, तो आप इसमें कम से कम आप जो है 4 लाइनें या तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा के 4 लाइनें आप बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो भी आप इस रेस्ड बेड पे जो ऊंची उठी हुई मेड़े हैं इस पे भी आप अगर 2 लाइन पाइप बिछाते हैं तो उसके 2 लाइन पाइप के 2 लाइन इधर और 2 लाइन दूसरी तरफ, इस तरीके से इसकी आप बिजाई कतारों में करेंगे तो घास और पतवार जो खर पतवार है निकालने में आसानी होगी। तो अगर आप जब देखें जैसे ही आप बुआई कर लें और उसके बाद ध्यान रखें कि इसमें जो खर पतवार भी कभी कभी उग आते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए अगर आपके पास पेंडीमेथिलीन दवा है तो ये 3 लीटर जो है दवा और 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है। तो इससे जो है आपका कम से कम 20-25 दिन कोई घास उसमें नहीं निकलेगी और ये जो पौधा अपना है पालक की पत्तियाँ जो ये जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और बहुत ही बढ़वार अच्छे तरीके से होगी। हो सके अगर आपके पास सूखी घासें हैं या पुआल हैं धान के तो इसको भी अगर आप पलवार के रूप में उस पर बिछा देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि मॉइस्चर जो नमी है हमारे खेत में वो बनी रहेगी जो बीज के अंकुरण को सहायक होगी। दूसरी बात है कि अगर तेज वर्षा आ जाती है किसी कारण से तो ये तेज वर्षा से बीज को बहने से बचा सकती है। तो इसलिए अगर आप सूखी पलवार डाल दें, अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है, अगर आपके पास सुविधा है पॉलीथीन की है तो आप उसको भी बिछा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद उसे हटा दें जिससे कि अंकुरण में कोई दिक्कत ना हो और बीज अच्छे से जमाव हो सके। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पालक की अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त फसल ले सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें बरसात का मौसम है तो जैसे ही जमाव आपका हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन के पौधे हो जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, पत्तियों में छेद करने वाले दिखाई देते हैं, रस चूसने वाले दिखाई दे सकते हैं जो कि जाड़ों में बहुत कम मिलते हैं। कि अगर ऐसी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं, लूपर दिखाई दे रहे हैं या कटुए कीट की तरह दिखाई दे रहे हैं तो आप नीम आयल आती है या नीम बीज अर्क का घोल आता है 5% का, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं तो आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकेंगे। ये जो रस चूसने वाले हैं या कुछ कुतरने वाले हैं तो इनसे आपकी रोकथाम बड़े आसानी से इन कीटों का हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और पानी जो सिंचाई की बात है इसको भी आपको देने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अगर बीच में बरसात हो जाती है तो ठीक है, नमी खेत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है फिर आपको देखना है कि फिर 5 से 7 दिन के बाद अगर जर्मिनेशन हो गया है, पौधे मुरझाने की अवस्था आने वाली है तो उसमें आप सिंचाई जरूर करें। जब भी करें आप हल्की सिंचाई करें, और अगर किसी कारण से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर उसमें कहीं डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ रही है तो हो सके तो जो आप सिंचाई वाले पानी में आप डाइथेनियम 45 का घोल बना दें तो उससे सिंचाई कर देंगे तो ये जो आपका विल्टिंग वाला पौधा है ये बीमारी से बचाव हो सकेगा। तो इस तरीके से अगर आप वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, और अगर आपके पास एक बात और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यदि आपके पास पाली हाउस है, इस समय गर्मी में अभी आपने कुछ लगाया नहीं है तो आप उसके अंदर में भी पालक की बहुत अच्छी खेती ले सकते हैं जो कि 6 से 8 हफ्ते में ही इसको आपको फसल मिल जाती है और इससे अधिक से अधिक आपको दाम भी बाजार में मिल जाएगा। तो आप उसका उपयोग खुले अगर हैं खाली हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि खेत पाली हाउस करते हैं और उनके पाली हाउस में लगातार खेती करने से उसमें क्षारीय भूमि बन गई है जिसका पीएच मान 8, 8.5 तक पहुंच गया है, तो मैं उनके लिए ये संस्तुत करना चाहता हूं कि अगर संभव है तो वो इस समय जब उनका खेत अभी खाली है, दूसरी फसल लगाने का टाइम अगस्त तक आता है, तो उसमें एक फसल पालक की ले लें तो ये काफ है, ये पालक सोख लेते हैं और अगली फसल के लिए बहुत ही ये जमीन अच्छी मानी जाने लगती है। फिर आप अगली फसल जब आप उसमें लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको एक अतिरिक्त लाभ उस
पालक की खेती से आप अभी ले सकते हैं, जो कि आप 6 से 8 सप्ताह में ही तैयार हो जाती है। तो इस समय आप देखेंगे, अगर आप 6 सप्ताह में लेते हैं तो हमारे किसान भाई हार्वेस्टिंग का जो बात हम करते हैं, अच्छी जब फले ये पौधे बन जाते हैं तो आप

0: हल्की सिंचाई कर दें तो दूसरी ग्रोथ जल्दी से आ जाती है और फिर आप 8 हफ्ते तक दूसरी कटाई करके आप फिर पालक की बाजार में बिक्री कर सकते हैं। इससे आप इस तरह से अधिक लाभ मुनाफा कमा सकते हैं, कम समय में अधिक मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसान साथियों, आपको ले चलते हैं मिर्ची के खेत में और जानेंगे हमारे किसान भाई ने इस मिर्ची की खेती को कैसे किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तो इसको तो पहले ये बताइए, लगाने से पहले एक किसान जो मिर्च लगाना चाहता है वो क्या क्या करे, कितनी जुताई कराई आपने?
2: इसमें तीन जुताई हुई
1: है। तीन जुताई बढ़िया से,
2: एक मिट्टी पलट हल से,
1: मिट्टी पलट हल
2: से जुतवा करके उसके बाद मेड़ बनवाए।
1: ठीक है, मेड़ की दूरी क्या रखी है आपने?
2: मेड़ की दूरी 3 फीट है।
1: 3 फीट मेड़ की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी क्या लगाई आपने?
2: 1 से 1.25 फीट।
1: 1 से 1.25 फीट की दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.25 फीट रखें और मेड़ से मेड़ की दूरी
2: 3 फीट
1: रखें। इस पे जो आपने रोप लगाया है वो दो दो प्लांट करके लगे हैं?
2: दोनों है।
1: अच्छा, दो भी लगे हैं, और
2: जो कमजोर पौधा था वो दो लगे हैं, जो मजबूत पौधा था वो
1: जो पौधा मजबूत था उसको हमने एक लगाया है और जो कमजोर थे उसका दो लगाया है। इसमें जुताई का जब आप खेत बना रहे थे बोने के लिए तो क्या क्या डाला है आपने?
2: उस समय सर हम इसमें गोबर की खाद में 1 बोरे सड़े हुए गोबर की खाद में प्रीमियम मिला के 1 लीटर इसमें
1: एक तो आता है बायो का बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का प्रीमियम 1 बोरे सड़ी हुई खाद में मिलाया और डाल दिया। ठीक है, रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा बताइए।
2: रासायनिक फर्टिलाइजर की टोटल इसमें है 2 बोरे डीएपी पड़ी है, 2 बोरे यूरिया। बस
1: डीएपी कब कब दिया है आपने?
2: डीएपी वही मेड़ चढ़ाते समय, जब पौधे लग गया उसके बाद चढ़ाते समय इस पे दिया।
1: अच्छा, मतलब पहली डीएपी आपने दिया जब आप प्लांट पकड़ लिया, गुड़ाई कराया इसकी और मेड़ चढ़ाते समय डीएपी डाल के दे दिया। फिर दोबारा भी दिया डीएपी?
2: एक बार दिए हैं,
1: थोड़ा सा
2: दिए हैं।
1: अच्छा, थोड़ा। ठीक है, यूरिया कितना दिया है आपने?
2: वही 2 बोरे की लगभग यूरिया भी दिया अभी तक।
1: अच्छा, अभी तक ये कब का लगाया है आपने इसको?
2: अगस्त का लगाया,
1: अगस्त फर्स्ट वीक का। अगस्त फर्स्ट वीक का लगा है, 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया इन्होंने लगाया है। केमिकल स्प्रे की बात करें हम मिर्च में, मिर्च में बहुत सारा किसान हमारा परेशान हो जाता है, तो मिर्च में केमिकल स्प्रे कितना हुआ है
2: इसमें? सर केमिकल तो नहीं डाले हैं, हाँ दूसरे एक और ही ऑर्गेनिक डाले हैं।
1: मतलब सहारा लेना पड़ा है, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा है। चलिए बताइए क्या क्या और कैसे प्रयोग किया है इसमें आपने?
2: इसमें शुरू में वही स्प्रे करते समय
1: अर्गोमाइट और
2: वायरस।
1: ये किस लिए, ये पहले किसानों को बताते चलिए इसका स्प्रे क्यों हुआ है?
2: ये माइट और थ्रिप्स के लिए हुआ,
1: माइट थ्रिप्स और सफेद मक्खी के लिए। ठीक है, जिससे पौधे जो है ये चिड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? ये SA90 स्टिकर और ग्रोइंग के समय क्या दिया है आपने ग्रोथ के लिए?
2: ग्रोथ के लिए एक नाइट्रो किंग है, एक ग्रो आता है उसको डाले।
1: कितनी स्प्रे हुई है उसकी?
2: उसकी 2 स्प्रे हुई है सर।
1: तो 2 स्प्रे करने के बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया मिली आपको
2: जी।
1: फिर ग्रोथ के बाद क्या डाला आपने?
2: उसके बाद ब्लूम और नाइट्रो किंग का
1: फूल जब आया तो कितने दिन बाद लगाने के, कितने दिन बाद?
2: यही 1 महीने बाद।
1: 1 महीने बाद लगभग 30-35 दिन बाद
2: जी।
1: ठीक है, ब्लूम नाइट्रो किंग आपने डाला
2: जी।
1: ये ब्लूम और नाइट्रोकिंग, मित्रों मैं बताऊं ब्लूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आता था कम से कम, और इस बार कितना आया?
2: अब की बार लगभग 16-17 हजार में होगा।
1: 16-17 हजार में। एक तो देखिए, हम जब ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में, प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे, तो पहला फायदा तो ये हुआ कि इनकी लागत धीरे धीरे कम हुई, दूसरा उत्पादन 1.5 गुना हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि बीमारियां इनके खेतों में नगण्य है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हमने मिर्ची से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने एक सफल किसान जो कि डॉक्टर है उनकी कहानी को जाना, और पालक की खेती को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM छावा की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया बिल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांडिया बिल नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी।
5: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई प्रोडक्शन हाउसेस हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिल्कुल एक नए एपिसोड में आज के कलाकार में। आज के कलाकार में आप सभी जानते हैं और अब पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं नए टैलेंट्स को जो आए, अपनी प्रतिभा दिखाएं, हमसे बातचीत करें, जैसे कि पूरी दुनिया उनको जान सके कि वो कौन हैं, क्या करते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान, जो टैलेंट, जो गायिका हैं, वो हैं जयश्री जी। बाकी जयश्री जी खुद अपने बारे में बताएंगी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे प्रोग्राम में हमारे सुनने वालों को प्लीज अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
6: थैंक यू सो मच समीर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जयश्री है, मैं फिलहाल बैंगलोर में ही रहती हूँ। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता हूँ, बट द लास्ट 10 इयर्स आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर।
5: बहुत बढ़िया। और आप क्या करते हो जयश्री जी?
6: हाँ जी, मैं एक्चुअली करंटली फॉर द लास्ट 20 इयर्स मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ। मैं सेल्स ऑपरेशंस देखती हूँ, कई इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैंने काम किया है, तो अभी भी फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। तो एंड प्लस जो है, ये तो रहा मेरे करियर का बात, बट म्यूजिक जो था मेरा हमेशा से मेरा पैशन रहा है। बचपन से ही मैं म्यूजिक मतलब सीख रही हूँ। मैं जब मैं कुछ नहीं समझती थी तभी से मैं सीख रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे म्यूजिक क्लासेस में डाल दिया था व्हेन आई वाज अराउंड आई थिंक 4 इयर्स 4 एंड हाफ इयर्स। तो तब से सीख रही हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एक्चुअली कर्नाटक क्लासिकल सीखा हुआ है। एंड हाँ जी, तो बस वही है, म्यूजिक साथ में ही है, हमेशा मेरे साथ है। एंड इट यू नो इट्स लाइक स्ट्रेस बस्टर टू मी। और अभी फिलहाल काम के बीच उतना गाना होता नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा समय निकाल के थोड़ा सा मतलब गाने गा लेती हूँ। और हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है, फ्रेंड्स का धुन बोल के हमारा एक ग्रुप है, हम उसमें छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। और मैं म्यूजिक क्लासेस भी ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो इस तरह से बस अच्छी तरह से कट रही है जिंदगी।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना कि जयश्री शेखर जी यूं तो तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, लेकिन अभी कर्नाटका में रहती हैं और उन्होंने कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, ट्रेनिंग भी लिया है और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वो आज की जनरेशन को, छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखा भी रही हैं। ये तो बात म्यूजिक की हुई, लेकिन वो एक बहुत हार्डकोर इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम भी करती हैं, विच कुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी यू नो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रेसिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है बिकॉज बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करना होता है। जयश्री जी बहुत बहुत प्यारी सिंगर हैं जो अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जयश्री जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गायकी जयश्री जी, थैंक यू जयश्री जी। हम लोग जयश्री जी, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, वी आर कम्युनिटी बेस्ड एनिमल्स। हम लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आपने अभी बताया आपका एक ग्रुप भी है जिसको आप एंजॉय करती हैं, म्यूजिकल ग्रुप है वो
1: जी।
0: तो
1: जी जी जी सर जी,
0: उसमें आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, क्या नाम है उनका, कौन है वो और उनके कौन से गुणों से आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं।
1: यहाँ पे एक ट्विस्ट है समीर जी, जो मैंने अपने ग्रुप के बारे में बताया वो तो खैर हम फ्रेंड्स, हम मिलके, हम चारों मतलब चारों ही प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड्स में, तो हम ये जस्ट एक अपने एक शौक के लिए हमने ये ग्रुप ये किया है। बट आपका जो सवाल है जो दोस्ती के बारे में जो है, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में हम जो है हम कई दौर से गुजरते हैं, हमारे लाइफ में कई फेसेस होते हैं, जैसे हमारा बचपन है, स्कूल डेज है, कॉलेज है, फिर हमारी जो कल्चर, जो वर्क, जो जो एनवायरनमेंट है, फैमिली है, सभी सभी में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। तो मेरा मेरा बेसिकली ये सौभाग्य रहा है कि हर जो फील्ड में मतलब हर स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे कोई ऐसा जरूर मिला है जो मतलब जिसके साथ मेरी एक स्पेशल बॉन्डिंग हुई है। जैसे मैं मतलब चार पांच लोगों का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बचपन में मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो बहुत ही मेरे क्लोज थे, फिर कॉलेज लाइफ में, फिर अभी यू नो जॉब के दौरान, तो एवरीबडी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सभी किसी ने मतलब मेरे लाइफ के टफ टाइम्स में सभी ने मेरा साथ दिया है हर मोड़ के मतलब हर स्टेज पे यू नो। तो मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर दोस्त का नाम नहीं ले सकती क्योंकि सभी सुन रहे होंगे अभी, तो एवरीबडी इज वेरी वैल्यूएबल टू मी। और सब में मतलब उनके सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो जो एक फ्रेंडशिप, वो जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं। आज भी मैं अपने यू नो बचपन के दोस्त को फोन करती हूँ तो आज भी हमारा वही तरह से बातचीत होती है जैसे हम पहले करते थे यू नो। सो तो वो एक जो एक प्यार है, जो एक हमारा एक अपनापन है, वो हमेशा यू नो मेरे साथ रहा है। तो आई रियली वैल्यू दैट फ्रेंडशिप, आई रियली चेरिश इट एंड आई बी चेरिशिंग इट फॉर माई लाइफ टाइम।
0: अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करता हूं मैम कि आपने किसी भी दोस्त का दिल ना तोड़ते हुए सब लोगों को आपने कहा है कि सब आपके अच्छे दोस्त हैं और आप उनकी इस क्वालिटी को चेरिश करती हैं कि आप लोगों के दोस्ती में एक थिकनेस है, एक प्यार है, मोहब्बत है। बहुत खूब
1: जी।
0: तो चलिए अगला गीत हम आपके सारे के सारे दोस्तों को ही समर्पित करते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है। बहुत बढ़िया, सुनते हैं दोस्तों अगला गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयश्री जी, मैं आपसे दोस्तों के ही संबंध में एक भी बात जानना चाहूंगा। अब आपकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं क्योंकि आपके सारे दोस्त आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देना चाहेंगी?
1: ये टफ क्वेश्चन है, बट हाँ ये है कि अभी मैं डिपेंड करता है कि मैं किसको क्या दे रही हूँ। मतलब मैं जब भी किसी को कुछ गिफ्ट देती हूँ, मेरी क्लोज फ्रेंड्स को, तो उनके मतलब उनके पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए, उनके चॉइस को ध्यान में रखते हुए, उनके लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखते हुए मैं गिफ्ट सेलेक्ट करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जो मटेरियल थिंग्स है वो उसका वैल्यू ज्यादा नहीं रहता है। एक छोटे से एक कार्ड में जो बात हम लिख के उसको भेज सकते हैं, वो चीज आई थिंक इट इज मिसिंग टुडे। हम जस्ट आजकल एक व्हाट्सएप करके छोड़ देते हैं, बट एक कार्ड भेजना जिसमें अपनी फीलिंग्स लिखना, दैट आई थिंक स्टिल हैज गॉट द सेम वैल्यू टुडे। आज भी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। जो सच्चे दोस्त हैं वो ये जरूर समझेंगे। अभी भी आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। हमारा एक छोटे से फ्रेंड्स ग्रुप, जो हम बचपन का हमारा फ्रेंड्स ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने मुझे विश किया, बर्थडे विश किया। अभी 4 जून को मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे बोला कि जयश्री आप देखिए अपने बर्थडे में हमें कुछ गाना सुना दीजिए। तो किसी और का बर्थडे था तो उसमें भी उन्होंने मुझे एक गाना गाने को कहा, तो मैं गाने रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ एंड दे फील वेरी हैप्पी। जैसे हैप्पी बर्थडे गा दिया, कभी कुछ उनका फेवरेट सॉन्ग गा दिया। सो ऐसे भी मैंने किया है बहुत बार। तो दिस इज रियली व्हाट आई वैल्यू।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई मटेरियलिस्टिक चीज को हटा के अगर हम इसी तरह की कोई इमोशनल चीज भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ा गिफ्ट होता है। बहुत खूब। दोस्तों सोचिए, विचार कीजिए, क्या इसी तरीके की कोई चीज हम भी कर सकते हैं क्या? चलिए तब तक एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: जो आपने पहले ना किया हो।
1: एक्चुअली मैं बेसिकली ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, लाइक आई डोंट टेक रिस्क मच इन लाइफ, बट एक बार मैंने कोशिश किया था बैंकॉक में, मैंने स्कूबा डाइविंग करने की कोशिश की थी, सो आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड उस समय, तो जब कुछ वो सारे इक्विपमेंट्स पहन के, मतलब दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग न्यू विच आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ, और जब मैं पहली बार जो मैं करने वाली थी तो वो सब गियर वेयर पहन के आई वाज लाइक फीलिंग सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, तो ये चीज आई थिंक आई डिड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि मैंने ये चीज किया, तो ये चीज मेरे लिए समथिंग समथिंग एक्साइटिंग था, अदरवाइज मैं ज्यादा कुछ बहुत कुछ एवरीडे कुछ एक्साइटिंग करने का नहीं सोचती हूँ, आई हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ एंड आई एम हैप्पी यू नो डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, मैं कुछ डेंजरस या कुछ ऐसे अलग चीजें कोशिश नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज प्ले ऑन द सेफ साइड, तो ये है, तो यही था मेरा एक्चुअली।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा इस सवाल का पूछने का पर्पज उद्देश्य जयश्री जी सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं और नया जो है वो खतरनाक होना जरूरी नहीं है, खतरनाक होना जरूरी नहीं है, हो सकता है हम कहीं पर सुने, मूवी में देखें या रील में देखें या कहीं बाजार में देखें और कोई एक नई डिश बनाने की कोशिश करें, नाउ कैन यू रियली कॉल इट डेंजरस?
1: नो।
0: तो एंड कैन यू कॉल इट स्टेइंग सेफ? नो। So, कुछ नया मतलब वो भी होता है, चाय हम रोज बनाते हैं लेकिन मैंने अभी 5 दिन पहले एक डिफरेंट तरीके से चाय बनाने की कोशिश की, लाइक मैंने मिट्टी के बर्तन में चाय बनाने की कोशिश की, तो क्या हम उसे नया नहीं बोलेंगे? मिट्टी के बर्तन में मैं चाहता था कि मिट्टी की खुशबू चाय में आए, तो आई जस्ट ट्राइड, और ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है कि मैं फेल हो गया हूं, लेकिन मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और उस कोशिश के करने में मैं बहुत एक्साइटेड था। सेम वे जब आपने पहली बार स्कूबा डाइविंग करी तो आप बहुत एक्साइटेड थी और वो एक्साइटमेंट हमें आपकी आवाज में सुनाई दे रहा था। तो मेरा पर्पस ये क्वेश्चन पूछने का इतना ही होता है, किसी भी पर्सन को ये रियलाइज कराना कि वो एक्साइटेड कब होते हैं और खुश कब होते हैं, तो क्या उन चीजों को हम बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट कर सकते हैं? बस इतना एक अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा पर्पस था। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जयश्री जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत बढ़िया। तो जयश्री जी, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्ज कीजिए आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, इनविजिबल, तो आप उन 24 घंटों में क्या करना पसंद करेंगी?
1: इनविजिबल यानी मिस्टर इंडिया की तरह मिस इंडिया। तो यस, ये बहुत ही एक अमेजिंग फैंटेसी है जो आई थिंक सभी सभी कभी ना कभी ये बात सोचे होंगे कि काश मैं इनविजिबल होती और काश मैं ये कर पाती। तो दिस इज रियली, आई मीन, हाँ डेफिनेटली मैं एक चीज बोलूंगी, मैं लाइक मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं ये करूंगी कि मैं आजाद पंछी की तरह कहीं भी चली जाऊं विदाउट एनी यू नो रेस्ट्रिक्शन, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, मैं कहीं भी उड़ सकती हूं, कहीं भी जा सकती हूं, कहीं भी जाके बैठ सकती हूं, कोई भी कंट्री में जा सकती हूं। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड। और एक और है कि मैं अपने दोस्तों को, दोस्तों पे प्रैंक्स भी करना चाहूंगी, यू नो उनको थोड़ा सा डराना, उसमें मजा भी आता है थोड़ा, यू नो लिटिल फन पार्ट ऑफ अस।
0: Okay.
1: और एक और चीज है जो मैं मतलब करना चाहूंगी कि मतलब अगर कोई किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं इनविजिबल होके उसको वो हेल्प करना चाहूंगी, यू नो, ताकि मतलब क्रेडिट वो ले जाए, क्रेडिट मुझे ना मिले, क्रेडिट उसको मिले, देखने वाला समझे कि उसने वो काम किया है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इन दैट कि मेरे वजह से किसी और को यू नो उस काम का क्रेडिट मिल रहा है, तो आई विल बी हैप्पी ऑन दैट। तो ये चीजें बेसिकली शायद मैं करना चाहूंगी।
0: बहुत खूब। अगेन दोस्तों, मेरा इस सवाल का पूछने का पर्पस भी यही होता है कि आप थोड़े से इमेजिनेटिव बनिए, क्रिएटिव बनिए, अपनी नॉर्मल रूटीन चलती हुई जिंदगी से ऊपर उठिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, और ये सोचिए कि क्या उसके लिए इनविजिबल होना ही जरूरी है, क्या विजिबल होते हुए भी वो काम नहीं किए जा सकते। सोचिए। आई एम नॉट अ जज, ना तो मैं आंसर दे रहा हूं, ना मैं आंसर देने के लिए काबिल हूं, मैं तो सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहा हूं बस। चलिए आगे बढ़ते हुए जयश्री जी की ही आवाज में सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत सुंदर। तो जयश्री जी, जब आप छोटे थे तो आपके आइडल, आपके हीरो कौन थे और भला क्यों?
1: हीरो मतलब आप डू यू वांट मी टू से अबाउट फिल्म हीरो या फिर लाइफ, लाइफ में जो मेरे हीरो थे वैसे उस टाइप के? लाइक आई लिटिल बिट आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन।
0: आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। आपके हीरो कौन थे? अब वो भगवान श्री राम भी हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं, धर्मेंद्र जितेंद्र भी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम आजाद भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, और ए आर रहमान भी हो सकते हैं। यू चूज।
1: ओके, तो मेरे हीरो तो मेरे पापा ही थे, क्योंकि बचपन में सबसे पहले हम अपने पापा, यू नो, अपने पापा को देखते हैं, वो किस तरह से वो यू नो काम करते हैं, यू नो घर संभालते हैं, तो उस तरह से मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड थी। तो मैं बचपन में मैं भी ये सोचती थी कि बहुत जल्दी यू नो मैं भी बड़े होके मैं भी यू नो काम करूंगी, अपना परिवार संभालूंगी, सब कुछ करूंगी, यू नो उस तरह से मैं बहुत इंप्रेस्ड होती थी अपने पापा से। धीरे धीरे जब यू नो थोड़ा थोड़ा हम बढ़ने लगे तो फिर बहुत कुछ यू नो बहुत कुछ चीजें हैं हमारे लाइफ में जो हम देखते हैं, कभी हम इसकी तरह बनना चाहते हैं, कभी हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, बट आई थिंक मेरे आइडल हीरो मेरे पापा ही थे और वो ही रहेंगे हमेशा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत प्यारी बात। दोस्तों गौर कीजिएगा, अपने मन के अंदर झांकिएगा। ज्यादातर हम अपने पिताजी को या अपनी मां को ही अपना हीरो पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हुए जयश्री जी के पापा को ही डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत सुंदर जयश्री जी, थैंक यू। जयश्री जी, आपने अभी एक सवाल पहले ये जिक्र किया था कि अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो आप खूब ट्रैवल करेंगी, तो आपकी ट्रैवल लिस्ट में कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप जाना चाहेंगी?
1: ट्रैवल लिस्ट में तो वैसे मैं एयरलाइंस में रहने की वजह से मैं लकी थी कि काफी जगहें मैं देख पाई हूँ, बट अभी भी मेरे बकेट लिस्ट में कश्मीर है जो मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ। इस बार मैं जाने का सोच रही थी पर पता नहीं अब जा पाऊंगी कि नहीं नियर फ्यूचर। एंड स्विट्जरलैंड हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी एक बार वहां पे भी। तो ये दो जगह है मेरे लिए अभी।
0: ओके, ब्यूटीफुल। और इंडिया में सारी जगह तो आपने घूम ही ली होंगी आई होप।
1: हाँ, इंडिया में मोर ऑर लेस सब देखा है सर।
0: ओके, अंडमान निकोबार, मालदीव्स, मे बी राजस्थान में जैसलमेर,
1: राजस्थान गई हूँ, गुजरात नहीं गई हूँ मैं, मतलब एक दो जगह छोड़ के आई हैव बीन एवरीवेयर ऑलमोस्ट लाइक।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। ये भी एक बहुत बड़ी नियामत होती है, बहुत बड़ी किस्मत होती है कि हम अपने ही देश को पूरी तरीके से घूम पाए, देख पाए। बहुत प्यारी प्यारी जगह है। चलिए दोस्तों, प्लान बनाइए, अपना टूर डिसाइड कीजिए और निकल लीजिए घूमने के लिए जैसे जयश्री जी करती है, और एक प्यारा सा गीत साथ साथ सुनते जाइए।

0: बहुत खूब। तो जयशोर जी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल पूछना चाहूंगा आपके लिए, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अहमियत रखती है, ज्यादा सुंदर है, प्यार करना या प्यार पाना?
1: ये दोनों ही लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ये हर इंसान का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ये उनके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो यू नो क्या चाहता है। मैं अपने लाइफ में दोनों ही चाहूंगी, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब सच्चा प्यार किसी से हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली है, तो क्या होता है कि हमारे बीच एक इमोशनल, एक वेरी स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, जिसकी मैं बहुत बहुत ज्यादा कदर करती हूँ। और हम में एक एक सेल्फलेसनेस भी आ जाती है, एक हमारी एक वो जो एक सेल्फिश फीलिंग है वो नहीं रहती है, वी यू नो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देम, तो वो एक भावना जो है वो हमारे अंदर आती है। तो ये चीज है, मतलब अगर हम किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, और कोई कोई अगर हमें प्यार करे, हमें वो प्यार मिले, उससे ज्यादा यू नो तकदीर आई डोंट थिंक किसी की हो सकती है। जिसको किसी का सच्चा प्यार अगर किसी को मिलता है तो हमें डेफिनेटली वो एक बिलोंगिंगनेस फील होती है, एक सिक्योरिटी भी फील होती है कि यस हमारे साथ ये है, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ कोई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है हमें, हमारे बेसिकली अगर कोई हमारा साथ दे, हमारे साथ है, तो हमें वो कॉन्फिडेंस भी आती है और हमारी सेल्फ एस्टीम का भी यू नो बहुत ज्यादा बूस्टिंग होती है यहाँ पे। तो प्यार अगर मिले तो इंसान क्या नहीं कर सकता, तो मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर, प्यार करना और प्यार पाना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल डिस्क्राइब्ड, बहुत खूबसूरत। मेरा पर्सनल मानना यह है, अब आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूं, स्वार्थी हो रहा हूं, लेकिन अगर हम अपने आप को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, ग्लास में पानी की तरह उसको भरते जाएं कि जब वो छलके तो सबको मिल जाए, हम अपने को इतना प्यारा बना लें कि हमारे प्यार से पूरी दुनिया भर जाए, तो प्यार करना और फिर उसके बदले में प्यार पाना, आपने कहा एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस्ड इमोशन है जिसको बहुत प्यार से चेरिश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे प्यार के नाम एक प्यारा सा गीत भी हो जाए फिर।

0: बहुत बहुत ही प्यारी गायकी। तो जयश्री जी, हमारे सुनने वालों के लिए, सिंगर्स के लिए, आपके म्यूजिकल ग्रुप धुन के लिए क्या संदेश है आपका?
1: यूं ही गाते रहो,
0: वाह,
1: मुस्कुराते रहो, बस यही कहना चाहूंगी। लाइफ है, इसको जीए। मैं लाइफ जीने में विश्वास करती हूँ, बस जिंदगी को फुल एंथुजियाज्म से जीना है आपको, और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन। थैंक यू समीर जी, थैंक यू नितिन जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच
0: जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू अवर प्रोग्राम। आपसे बातें करके, आपके गीत सुनकर बहुत मजा आया। थैंक यू
1: सो मच सर।
0: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड, जिसमें मैं मिलवाना चाहूंगा आपको ऐसी प्रतिभा से, ऐसे टैलेंट से जो मिडास टच से बच छू कर आए। तो मतलब जैसे मिडास में था ना, वो किसी को भी छू देते थे तो सोना बन जाता था। तो जो आज हमारी टैलेंट है वो है अबोली मैम। हम अबोली जी से ही बात करेंगे, उनसे उनका परिचय लेंगे, कौन है वो, क्या है वो, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी एक के स्पर्श से वो सोना बन गई। तो अबोली जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ना, हमारे आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स आपके बारे में सुनना चाहते हैं।
1: जरूर समीर जी, नमस्ते। विश्व भर में एसएन रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं को अबोली ठोसर का सादर प्रणाम। सबसे पहले आपकी अनुमति से मैं ईश्वर, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज इस भेंटवार्ता, इस इंटरव्यू के लिए मेरा नाम जिन्होंने सुझाया और मुझे इस योग्यता का समझा, वो श्री तुषार सामंत जी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बेसिकली डोंबिवली, मतलब बंबई के एक छोटी सिटी है, वहां से मैं हूँ। हमारे परिवार में शुरू से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। इसके लिए मुझे माता पिता ने बहुत छोटी उम्र में, मतलब महज दूसरी कक्षा में थी तब से मुझे क्लासिकल संगीत सिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब थोड़ी रुचि बढ़ने लगी, और इसके परिणाम स्वरूप 12वीं कक्षा में थी, यानी सिर्फ 17 वर्ष की आयु में, मैंने गांधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि प्राप्त कर ली।
0: ऑल राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, अबोली जी ने बता दिया आपको कि वो कौन है, कहाँ है, तो अबोली जी से ही पूछना चाहूंगा मैं, और जो मैंने बात कही थी मिडास टच की, तो अबोली जी वो टैलेंट हैं, वो प्रतिभा हैं जिन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ कई शो किए, तो हम उस बारे में ही जानना चाहेंगे। अबोली जी, चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम अबोली जी के ये गीत सुनते हैं जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए तैयार किए थे, फिर हम जानेंगे उनका संबंध स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से। तो लीजिए पहले ये गीत सुनिए।

0: बहुत सुंदर गीत और बहुत ही प्यारी प्रारंभ, बहुत ही प्यारा स्टार्ट। अबोले जी, अब प्लीज हमें बताइए, ये स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ उनको छूने का, उनके साथ गाने का मौका आपको कैसे लगा, ये बताइए ना।
1: हाँ जी, जरूर। मेरे सबसे पहले गुरु, जैसे बोलते हैं माता पिता, उनके बाद मुझे संगीतकार, श्री मराठी के संगीतकार, जाने माने संगीतकार श्री दशरथ पुजारी सर, उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। पुजारी सर के थ्रू ही मुझे जाने माने इंडस्ट्री के म्यूजिक अरेंजर अनिल मोहिले जी से शिक्षा प्राप्त करने का और उनसे जान पहचान करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनिल जी के थ्रू मेरा लता जी के शो में प्रवेश हुआ। उनकी वजह से मुझे लता जी के शो में एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट गाने का मौका मिला। तो ये सब ऐसे ही, ये सब एक के बाद एक घटनाएं होती गई और इट वॉज सो इजी फॉर मी कि अचानक से मतलब लता जी के शो में गाने का मुझे मौका मिल गया।
0: बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और फिर हम और बातचीत करते हैं अबोले जी से कि क्या रहा एक्सपीरियंस उनका लता जी के साथ। आइए, तब तक पेश करता हूं ये गीत

0: बहुत सुंदर गीत। तो चलिए आबोली जी आगे बढ़ते हुए बताइए ना, जब लता मंगेशकर जी के साथ आप गा रहे थे तो कैसा था एक्सपीरियंस, उनके बगल में खड़े होने में या उनके साथ एक ही स्टूडियो में होने में कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या फील हो रहा था आपको?
1: या पहले तो मैं बताऊंगी कि फिल्म इंडस्ट्री का पहला बतौर कोरस सिंगर मुझे पहला मौका अनिल जी ने दिया था, वो लता जी की रिकॉर्डिंग का था जो हमने पहला गाना बजाया वंदे मातरम का आनंद मठ फिल्म से। तो वो मेरा फिल्म इंडस्ट्री का बतौर कोरस सिंगर इस हिसाब से मेरा पहला रिकॉर्डिंग था वो फिल्म इंडस्ट्री का, इसके लिए ये गीत मैंने मेरी लिस्ट में पहले रखा था। तो वो हमने सुना है शायद
0: जी।
1: हाँ अभी लता जी, देखिए लता जी को मिलने के बाद पहले बार तो

0: चीजें,
1: जी
0: और भगवान की कृपा से उनके लगातार 6 शोज में मुझे मुझे एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट के रूप में मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मतलब ये उपलब्धि मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की, गर्व की और गौरव की बात रही है। और
1: बहुत
0: मेरे सिटी से मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ, अकेली ऐसी कलाकार हूँ जिसे इतने 6 कार्यक्रमों में एक बैकअप वोकल आर्टिस्ट के रूप में मंच साझा करने का अवसर मिला मेरी सिटी से।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: थैंक यू।
1: चलिए दोस्तों, फिर अबोली जी के संगीत का भी आनंद उठाएं, जो बिल्कुल लेजेंडरी लता मंगेशकर जी को छू के आया, उनसे सीख लेके आया।

0: बहुत सुंदर है बोली जी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल.
1: थैंक यू, थैंक यू.
0: आपने 17 साल की उम्र में संगीत विशारद कर लिया गंधर्व महाविद्यालय से.
1: हाँ जी,
0: थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. हाउ डिड यू डू दैट, कब कैसे क्या हुआ?
1: ये तो जैसे मैंने पहले मेरे गुरु, हम लोग बोलते हैं कि अपने माता पिता अपने पहले गुरु होते हैं, और माता पिता मेरे दोनों अच्छे संगीत सुनने वाले थे, अच्छे गा भी रहते थे दोनों, तो उनको संगीत की बहुत अच्छी पहचान थी. और उनका ये हमेशा कहना था कि अच्छा सुर सीखना है आपको तो क्लासिकल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. इसके लिए मुझे, जैसे मैंने बोला कि दूसरी कक्षा में मुझे मम्मी ने, मुझे अभी भी याद है, मुझे मम्मी ने उठाकर पटक दिया था वो क्लास में, जो मेरी पहली गुरु थी श्रीमती लीला आघारकर, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा. तो वो करीबन, मतलब शुरू शुरू में तो बहुत कंटाल जाती थी मैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिन में मेरा चस्का बढ़ने लगा और फिर ये संगीत विशारद तक की सफल तय हो गई आसानी से.
0: बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब. तो दोस्तों, ये हैं वो टैलेंट, वो प्रतिभा जिनके गीत आज आप सुन रहे हैं, और बहुत मेहनत, बहुत प्रतिभा, यू नो, शिद्दत के साथ, पूजा के साथ उन्होंने अपने संगीत की पूजा की. आइए सुने ना ये दो प्यारे से गीत, उसके बाद हम वापस आए आबुली जी के पास और भी बहुत कुछ सीखने के लिए.

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए अबोली जी, ये रोशन सर के साथ जतिन ललित साहब की शो में और इस्माइल दरबार शो के बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये कैसे हुआ? उसके बाद आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला सारेगामा में, मेरी आवाज सुनो में और धुन धमाका में, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना।
1: जैसे मैंने इंडस्ट्री में गाना शुरू किया तो एज अ बैकअप वोकल आर्टिस्ट, बोलते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी से मेरा परिचय होने लगा लोगों को कि अच्छी गाती है, थोड़ा बहुत मैं नोटेशन भी पढ़ सकती थी, गा सकती थी। तो उस हिसाब से मुझे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के अरेंजर्स से मुझे वो बुलावा आने लगा कि आप ये इसमें रिकॉर्डिंग में आ जाइए, इनके रिकॉर्डिंग में आ जाइए ऐसे। तो इस वजह से ये बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके लाइव शोज में भी काम करने का मौका मिला। और रोशन्स तो ये 1999 की बात है जब कहो ना प्यार है पिक्चर रिलीज हुई थी, तब ये रोशन्स नाम का शो, मतलब ऋतिक रोशन जी के दादाजी रोशन साहब जो ताजमहल पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनका उनके दोनों बेटे मतलब राजेश रोशन, राकेश रोशन और ऋतिक रोशन, ऐसे पूरे रोशन्स फैमिली का वो शो था। तो वो भी शो के लिए कोई एक थे हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने मेरा नाम उधर सुझाव दिया था कि इसको लेते हैं क्योंकि नोटेशन थोड़ा बहुत पढ़ना जानती है इसके लिए। तो ऐसे ऐसे मौके अपनी मेहनत की वजह से थोड़े फार और भगवान की कृपा से ऐसे ऐसे मौके मिलते गए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आइए ना, इन सभी चीजों को विचार में रखते हुए, सोचते हुए, महसूस करते हुए सुनते हैं ये गीत अबोली जी की ही आवाज में जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए। बहुत बहुत शुक्रिया अबोली जी, सुनते हैं।
1: थैंक यू, थैंक यू।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। हाँ बोली जी, आगे बढ़ते हुए मैं उस कंपटीशन के बारे में बताइए जो ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया था। आपने क्या रोल अपना वहां पर निभाया, कैसे आपकी एंट्री हुई उसमें, क्या हुआ वहां पर? आपने आपने शायद दिल्ली और हुबली में भी इनके शोज को ऑर्गेनाइज किया, क्या हुआ था?
1: ये एक्चुअली ये दो अलग चीजें हैं। ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वे उनकी स्टार ट्रेक करके गाने की कंपटीशन आई थी और जो वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस की जो कंपटीशन थी उससे वो आए थे, जो फाइनलिस्ट थे उनको तेरे मेरे सपने नाम की फिल्म आई थी उन पे उनको चांस दिया था। लेकिन ये कॉम्पिटिशन वहां पे 40,000 एंट्रीज आई थी, उसमें से 40 लोग सिलेक्ट हुए थे, उनमें मेरा नंबर आ गया था भगवान की कृपा से, तो हमारी वो कंपटीशन हो गई थी, सिंगिंग कंपटीशन। और ये जो आप बात कर रहे हैं दिल्ली और हुबली की, वो मैं लता जी के साथ, जैसे मैंने कहा कि 6 लगातार शोज मुझे करने का मौका प्राप्त हुआ, तो 6 शोज के दरमियान, मतलब हर एक शो की 8 से 10 रिहर्सल रहती थी, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक या 5 बजे तक, तो इतने घंटे, इतने दिन लता जी से मिलने के बाद, होने के बाद लता जी की इतनी सारी खूबियां वो महसूस होने लगी, तो मेरा दिल करने लगा कि ये, मतलब जो लता जी के फैंस है, जो लता जी के बेहद चाहने वाले लोग हैं, तो जो चीजें मैंने अनुभव की है वो लोगों तक किसी भी हाल में पहुंचानी चाहिए, ये मेरा निजी कर्तव्य है। तो इसके लिए मैंने खुद का एक कॉन्सेप्ट शो शुरू किया है जिसका नाम है लता दीदी अविस्मरणीय अनुभूति। मतलब लता जी के साथ मिलने के बाद मेरे साथ जो ऐसे बेहद खूब खास ऐसे किस्से हुए हैं जिनसे मैं लता जी की खूबियां बयां कर सकती हूँ, ऐसे सब किस्से, खुद के किस्से मैं ये शो में बताती हूँ, और वो शो मैंने दिल्ली हुबली में किए थे।
0: जी बहुत खूब। तो दोस्तों किस तरीके से अबोली जी लता मंगेशकर जी से मिलती रही, उनके बारे में जानती रही और अब उनके बारे में हमें बता रही हैं। चलिए दोस्तों फिर इनके गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं।